0: आज के सुविचार।
1: प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा क्षण अवश्य आता है जब सारे स्वप्न, सारी आशाएं, सारे दृश्य ध्वस्त हो जाते हैं, जीवन के सारे आयोजन ही बिखर जाते हैं। एक और धर्म होता है और दूसरी ओर सुख। किसी को धर्म संकट कहते हैं जब धर्म का वहन ही संकट हो और धर्म का त्याग ही दुख हो। विचार कीजिए, कभी किसी स्वजन के विरुद्ध सत्य बोलने का अवसर प्राप्त हो जाता है, कभी ठीक दरिद्रता के समय सरलता से चोरी करने का मार्ग प्राप्त हो जाता है, कभी किसी शक्तिशाली राजनेता या राजा के कर्मचारी का अधर्म प्रकट हो जाता है। सबके जीवन में ऐसी घटना बनती ही रहती है। अधिकतर लोग ऐसे किसी क्षण को धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं पाते। हमें किसी प्रकार के संघर्ष का अनुभव ही नहीं होता। सहजता से सुख की ओर खींचे चले जाते हैं, जैसे मक्खी गुड़ की ओर खींची चली जाती। वास्तव में धर्म संकट का क्षण ईश्वर के निकट जाने का क्षण होता है। यदि हम संघर्षों से भयभीत ना, सुख की ओर आकर्षित ना, अपने धर्म पर दृढ़ रहे, तो ईश्वर का साक्षात्कार दूर नहीं। पवन से युद्ध करने वाला पत्ता यदि पेड़ से गिरता है तो भी आकाश की ओर उठता है। पवन से झुकने वाली घास वहीं भूमि पर रह जाती है। अर्थात धर्म संकट से यदि हम संकट को ही टाल दें तो सुख तो मिलता है, जीवन बढ़ता है, किंतु क्या चरित्र नहीं टूटता? क्या आत्मा दरिद्र नहीं हो जाती? क्या ईश्वर से अंतर नहीं हो जाता? स्वयं विचार की। दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करते हैं। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि इन सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं, और यदि अनजाने में भी कोई अन्य व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है? क्या हमने कभी विचार किया? सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते, अपना निर्णय

व्यक्ति पर थोपते हैं, अर्थात किसी की स्वतंत्रता का अस्वीकार करते हैं। और जब स्वतंत्रता का अस्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय दुख से भर जाता है, और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देह है, क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं?

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखा है, तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरी निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: પતંજલિબોન, ગીત તો આંશો પૂરું અને ગીતને બાદ એક વખત ફેરી આપણે કિસાન ભાઈ બહેનોનું આપણે સ્વાગત કરહા આપણે આજની કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. ને જેમ કે ગીતે કે પહેલા આપણે વિષય બતાડ્યું હતું કે જાણંગા પુવાડી ને બહાર અમે કે આ પુવાડી હું કહેવાય ને આ આપણે પહેલા ઔષધિને રૂપમાં હું કામ કરી શકે.
1: હવે તો જાગૃતિપૂર્ણ અણા વિષય માટે બાતચીત કરવા બદલે આપણે કાર્યક્રમ થકી જોડી રહે મનીષ સર, તો સૌથી કે પહેલા આપણે હામરી લડાની વાતે મોરેકર આપણી વાતે.
0: હવે
1: સર નમસ્કાર.
2: અંજલિ જી નમસ્કાર.
1: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં.
2: જી ધન્યવાદ.
1: સર જૈસા કે આપ હમારે કાર્યક્રમ સે નિરંતર જુડતે રહેતે હૈ ઓર કાર્યક્રમ મેં ખેતીવાડી સે જુડી વિશેષ જાણકારી આપ હમારે કિસાન ભાઈ બહેનો કો દેતે હૈ, તો સર આજ હમારે કાર્યક્રમ મેં આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ પુવાડિયા ઔષધિ કા મહત્વ ઓર ઉસકે લાભ કો લેકર. તો સર સબસે પહેલે હમ કાર્યક્રમ મેં આપસે યહી જાનને વાલે હૈ કે પુવાડિયા આખિરકાર હૈ ક્યા.
2: જી અંજલિ જી, યે બહોત જરૂરી પ્રશ્ન આપને પૂછા હૈ કે પુવાડિયા ક્યા હોતા હૈ.
1: જી જી,
2: તો અગર દેખા જાય તો પુવાડિયા હમારે યહાં પ્રાકૃતિક રૂપ સે ઉગને વાલા એક પૌધા હૈ જો હમે કહીં ભી ઉગા હુઆ દિખાઈ દેતા હૈ.
1: જી જી,
2: સામાન્ય રૂપ સે યદિ ઇસકી પહેચાન કી બાત કરે તો યે મેથી કે પૌધે કે જૈસા દિખાઈ દેતા હૈ, પર ઇસકી જો પત્તિયો કા આકાર હૈ, ઇસકે ફલિયો કા આકાર હૈ યા ઇસકે પૌધે કા જો આકાર હૈ, તો સભી ઉસ મેથી કે મુકાબલે મેં દો ગુના સે તીન ગુના તક હો સકતા હૈ.
1: જી જી,
2: ઓર હોતા યે ઝાડી નુમા પૌધા હી હૈ. યે હમારે યહાં તો બહુતાયત મેં પાયા હી જાતા હૈ.
1: જી જી,
2: ઓર મૂળ રૂપ સે યે હમારે યહાં કા હી પૌધા હૈ. ઇસકે જો ઉપયોગ હૈ ઉસમે ઇસકી ફૂલ, ઇસકી પત્તી, ઇસકે બીજ, ઇસકા તના, યે સભી કહીં ના કહીં જો હૈ હમારે કામ મેં આતે હૈ.
1: જી બિલકુલ સર, આપને સહી કહા. જૈસા કી હમ આપકે માધ્યમ સે બહોત અચ્છી તરીકે સે યે જાન પાએ કે પુવાડિયા જો હૈ વો ક્યા હોતા હૈ. સર યહીં અબ હમ ઇસકે ઔષધીય ગુણો કે બારે મેં આપસે જાનના ચાહેંગી કે અગર યે હમે કહીં ભી દિખાઈ દેતા હૈ તો હમ યે સોચ લેતે હૈ કે યે તો એક જંગલી પૌધા હૈ ઓર હમ ઉસે કાટ કર ફેંક દેતે હૈ, લેકિન હમ જૈસા કી આપકે માધ્યમ સે જાન પા રહે હૈ તો ઇસકે ઔષધીય ગુણ ક્યા ક્યા હો સકતે હૈ.
2: હમ ઇસકે ઔષધિ ગુણો કી બાત યદિ કરે તો સબસે પહેલી ચીજ હૈ કે હમે ઇસકી ઉપલબ્ધતા કબ હોગી.
1: જી જી,
2: તો ઇસકી ઉપલબ્ધતા જો હોતી હૈ વો બારિશ કે શરૂ હોતે હી ઇસકે પૌધે ઉગના શરૂ હો જાતે હૈ ઓર ઇનકા જો પુષ્પકાલ હૈ વો જુલાઈ સે સિતંબર તક હોતા હૈ.
1: જી જી,
2: ઓર ઇનકા જો ફલ ઇસ પે લગતે હૈ યાનિ કે ફલિયા લગતી હૈ ઇસ પે વો અગસ્ત સે નવંબર તક ઉસમે લગતી હૈ.
1: જી જી,
2: તો તબ તક ये पौधा हमको हमारे आसपास आसानी से
1: मिल जाता है. जी बिल्कुल,
2: कई जगह पे इसको कुछ अलग नामों से भी जाना जाता है. हमारे यहाँ वागड़ में इसको पुवाड़िया बोलते हैं.
1: जी जी,
2: इसको चकवड़ भी बोलते हैं, इसको चकमर्द भी बोलते हैं, कहीं पवाड़ बोलते हैं, और अंग्रेजी में यदि आप इंटरनेट पे अगर सर्च करना चाहें तो एशिया टोरा नाम से आसानी से इसको सर्च किया जा सकता है और इसके बारे में जाना जा सकता है.
1: जी बिल्कुल,
2: अब अगर हम इसके औषधीय गुणों की बात करें तो इसके जो औषधीय गुण हैं वो किन किन बीमारियों पे काम में आते हैं.
1: जी जी,
2: तो ये हृदय के लिए भी अच्छा होता है, पित्त और वात इनमें भी ये फायदेमंद होता है, कफ के रोगों में भी ये फायदेमंद होता है.
1: जी जी,
2: श्वास से संबंधित जो रोग होते हैं उनमें भी ये फायदेमंद होता है.
1: जी बिल्कुल,
2: दांत खाज खुजली जिसको बोलते हैं, चमड़ी के रोग उनमें भी ये काम आता है.
1: जी हाँ,
2: और कई सारे जानकार लोग विशेष तरीके से जब इसका प्रयोग करते हैं हमारे जो गुणी जन हैं तो जहर उतारने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है.
1: जी बिल्कुल,
2: और सामान्य रूप से अगर इसके पत्तों की भाजी बना के खाई जाए तो ये कृमि को भी नष्ट करती है और इसे पशुओं को भी दिया जा सकता है.
1: जी बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारे किसान भाई बहनों को पुवाड़िया के औषधीय गुण बताए हैं और हम सभी जान पाए कि ये बहुत ही फायदेमंद होता है. तो सर अब यही हम जानना चाहेंगे कि ये जो औषधीय गुणों से भरपूर पुवाड़िया जो है वो किन किन बीमारियों से हमें फायदा पहुंचाता है.
2: एक तो प्रमुख रूप से इसका जो जिस बीमारी में ज्यादा उपयोग किया जाता है वो माइग्रेन या आधा सिर दर्द जिसको बोलते हैं.
1: जी जी,
2: उसमें इसका प्रयोग किया जाता है. उसमें इसके बीजों को पीस के पानी के साथ
1: जी जी
2: सिर पे लगा के रखने से इसमें काफी आराम मिलता है और यदि लंबे समय तक गुणीजनों के परामर्श अनुसार इसका उपयोग किया जाए तो ये माना जाता है कि आधा सर दर्द हमेशा के लिए ये खत्म कर देता है.
1: जी बिल्कुल,
2: इसी तरह से अगर दूसरी हम बात करें तो सामान्य रूप से जो कमर का दर्द होता है जो ज्यादातर महिलाओं में ज्यादा होता है
1: जी बिल्कुल,
2: कुछ विशेष कारणों से, उसमें भी इसके बीजों का जो पाउडर है या चूर्ण है उसको गुड़ के साथ लिया जाता है
1: जी जी।
2: और मैं हर बार भी बोलूं तो गुड़ और घी के साथ इसको लिया जाता है, पर इसकी जो भी मात्रा हमको लेना है वो हमारे स्थानीय गुणीजन से हमको पूछ के लेना है
1: जी जी।
2: कि कितनी मात्रा का सेवन करना है और कितने समय तक सेवन करना है
1: जी बिल्कुल सर।
2: इसी तरह हम अगर दांत खात खुजली यानी कि चर्म रोग की बात करें तो उसमें भी काम आता है
1: जी बिल्कुल।
2: इसमें हम अगर उपलब्ध हो तो पुआड़िया के पत्ते लेते हैं, उनको उबालते हैं
1: जी जी।
2: और इसका जो पानी होता है उसको हम उस स्थान को धोएं तो धीरे धीरे करके वो जो चर्म रोग है
1: जी
2: वो
1: जी।
2: पूरी तरह से ठीक हो जाता है
1: जी बिल्कुल सर।
2: सूजन को कम करने में भी ये इसी तरह से काम आता है, इसी तरह से इसका काढ़ा बना के सूजन वाले स्थान पर किसी पट्टी के कपड़े के साथ बांध के अगर लगा लिया जाए तो ये काफी लाभकारी होता है
1: जी बिल्कुल।
2: जिस तरह से हमने बात की कि इसको गुड़ और घी के साथ इसके बीजों के पाउडर को लिया जाता है तो ये खून को भी साफ करता है
1: जी बिल्कुल।
2: तो कई सारे त्वचा के रोग ऐसे भी होते हैं जिनमें शायद खून में किसी तरह की तकलीफ होने के कारण होते हैं तो वो इससे ठीक हो जाते हैं
1: जी जी।
2: इसमें एक ध्यान देने वाली बात हमेशा ये होती है कि पवाड़ बच्चों के लिए जो है हानिकारक हो सकता है
1: जी जी।
2: तो ऐसे में बच्चों को जब यदि आप इसको किसी समस्या के चलते देना चाहते हैं तो गुणीजन की सलाह अनुसार दे और इसकी जो पत्तियों की भाजी है वो बच्चों को कम मात्रा में खिलाएं
1: जी जी।
2: क्योंकि एक तो इसमें अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है
1: जी जी बिल्कुल।
2: तो मोटे मोटे ये इसके सामान्य औषधि उपयोग हैं जिनको हम अपने स्थानीय स्तर पे उपलब्ध होने पे इसका उपयोग करके इस तरह की बीमारियों में काफी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और
1: जी
2: क्योंकि
1: जी।
2: ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक तरीके से उगता है तो इसके लाभ काफी ज्यादा हैं। और इसी के साथ साथ यदि इसके पत्तियों का हम भाजी बना के खाते हैं तो विशेष रूप से ये उन क्षेत्रों के लिए तो वरदान से कम नहीं है जिन क्षेत्रों के पानी में फ्लोराइड की समस्या होती है और जिसकी वजह से हड्डियों में टेढ़ा पना जाता है या वो धनुषाकार हो जाती हैं। ये समस्या बच्चों में आती है तो उस स्थिति में यदि नियमित अंतराल से इसकी भाजी का सेवन किया जाए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है
1: जी
2: और
1: जी।
2: फ्लोराइड का पानी हमारी हड्डियों के कैल्शियम को कम करने लगता है
1: जी
2: तो
1: जी।
2: उसमें ये बहुत लाभप्रद होती है। इसके साथ यदि हम चाहें तो इसकी पत्तियों को सुखा के भी रख सकते हैं
1: जी जी।
2: और हम जो दाल सब्जी हमारे घर में बना रहे हैं या चटनी तो उसमें सूखी हुई 5-10 पत्तियां डाल के यदि इसका नियमित परिवार में उपयोग करें
1: जी जी।
2: तो परिवार के कैल्शियम की आवश्यकता को ये पूर्ण करता है और भविष्य में होने वाले जोड़ों के दर्द में ये सुरक्षा प्रदान करता है
1: जी बिल्कुल। जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आपने कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से ये बताया कि पुआड़िया औषधि का क्या महत्व है, क्या लाभ है और किन किन बीमारियों में इसके फायदे होते हैं। साथ ही सर आपने ये भी बताया कि इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो सर यही अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: तो अंत में मैं यही बोलना चाहूंगा कि जैसा हमने जाना कि पुआड़िया सेहत के लिए कई तरह से बहुउपयोगी पौधा है जो कई तरह की औषधीय गुणों को अपने अंदर रखता है और इसके प्रत्येक चीज अलग अलग बीमारियों पे हमको काम आती है और ये प्राकृतिक औषधि है
1: जी जी।
2: लेकिन हमेशा इसमें एक चीज ध्यान रखने की ये होती है कि एक तो हम गुणीजन की सलाह अनुसार ही इसका सेवन करें
1: जी
2: और
1: जी।
2: दूसरा इसमें बहुत ज्यादा गुण है सोच के इसके सेवन की अधिकता जो है वो नुकसान दे सकती है
1: जी बिल्कुल।
2: तो सेवन को भी संयमित और नियमित रखें
1: जी बिल्कुल सर, आपने बहुत सही कहा। तो जैसा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से ये बताया कि जब हम किसी औषधि गुणों से भरपूर किसी चीज को अपने जीवन में शामिल करते हैं तब हमें उसका उपयोग करते समय बहुत सारी बातों को ध्यान रखना है। हमें उससे के लाभों को जानकर उसका हद से ज्यादा सेवन नहीं करना है, नहीं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो सर जैसा कि कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें हो गई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी आपका भी, और मैं श्रोताओं का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये जानकारी उनके काम आएगी।
1: જાગૃતિ બોલ, જેમ કે આવડે આપણે વેસ્ટમાં મનીષજી સર જોડે તક હતા ને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકા તકી બતાડી દીધું હે કે ઔષધીય ગુણો તકી ભરપૂર આજે પુવાડિયા હે, આનું હું મહત્વ હે, આ હું કહેવાય હે ને આના સ્વાસ્થ્ય લાભ હું હું હે ને હરતે અગર આપણે આનું સેવન કરી રહ્યો તો આપણને ઘણા અકની વાતનું ધ્યાન રાખવું હે। તો આશા કરો કે આ હંગરી વાતે આપણે ભાઈ બુનોને ગમી હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ તકી સૂટ પડવાનું। તો સૂટ તો પડો પણ સાથે પહેલા હમરી લાયક ઓર ગીત ને મોરે પડો સૂટ
0: હોવે।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: मारू नाम गिल्ली है, ने मु मुन्नी नी मोटी बोन हूँ। एक दाड़ो स्कूल थे के आवी तो देखियो कि मुन्नी घणी रोई रही हती, तो मु हमजी के ने पानी नी तर लागी रही है, तो मु दूड़ी ने बा कने गई ने कीधु कि बाबा मुन्नी ने तर लागी है तो इन्हें पानी पिवड़ाओ दे। बाए हफ्तिंग ना कही दीदु ने मने कीधु कि 100 महीना हुदी मुन्नी केवल इनी माँ नो दूध स पिएगा, ने अगर आपड़े मुन्नी ने कहीं भी खबड़ावंगा तो इन्हें दस्त लागी जागा। तो पसे बीजी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दीदु कि 100 महीना हुदी तने केवल माँ नो दूध स पीवू है।
5: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।
6: ग्राम सभा में बोने बोले हैं तो फैसला मजबूत थे हैं। वन अधिकार सिर्फ कानून नहीं, माँ जंगल थकी जुड़ियों बोनों नो रिश्तो है। जे जंगल में हमसे हैं ई इन्होंने रक्षा करे हैं, तो आवो बोना ने भागीदारी बढ़ावा, ग्राम सभा मजबूत बनावा ने जंगल नो भविष्य सुरक्षित करा। बोना ने आवाज विकास ने असली पहचान है।
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सच्चा बचपन। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर, लेकर हाजिर हो चुकी हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे घर की उस थाली के बारे में जिसमें रंग जितने ज्यादा होंगे बच्चों के लिए पोषण की संभावनाएं भी उतनी बढ़ेंगी। बच्चों के भोजन में हम अक्सर यह सोचते हैं कि उन्हें क्या खिलाया जाए, कितना खिलाया जाए, कौन सी चीज उनके लिए विकास के लिए ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन इस पूरी चर्चा में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मौसम के अनुसार मिलने वाले फल और सब्जियों को लेकर। हमारे आसपास प्रकृति हर मौसम में हमें अलग अलग खाद्य पदार्थ देती है। खासकर स्थानीय स्तर पर मिलने वाले फल और सब्जियां परिवार के रोजमर्रा के भोजन में आसानी से शामिल किए जा सकते हैं। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम उनके महत्व को समझें और बच्चों की थाली में उन्हें सही तरीके से जगह दें। तो आज इस विषय पर हमारी आपसे ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं मौसम के अनुसार मिलने वाले फल और सब्जियों को लेकर। तो इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ विषय विशेषज्ञ मौजूद है, तो आइए सुनते हैं उन्हीं से इन महत्वपूर्ण बातों को, फिर आगे हम हमारी बातें जारी रखेंगे। सर नमस्कार।
1: नमस्ते
0: सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में। सर, जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम सच्चा बचपन से जुड़ रहे हैं और आज हमारी कार्यक्रम में आपसे ढेर सारी बातचीत रहने वाली है कि बच्चों का आहार, मौसमी फल किस तरीके से हम उनके खाने में शामिल कर सकते हैं, तो सबसे पहले सर आप कार्यक्रम में अपना परिचय हमें बताइए।
1: नमस्कार, मेरा नाम जलज उपाध्याय है, उद्यान विभाग बांसवाड़ा के अंदर मैं कार्यरत हूँ।
0: बिल्कुल,
1: सज्जनगढ़, कुशलगढ़, गांगड़ तले क्षेत्र मोस्टली हमारा एरिया है।
0: बिल्कुल, तो सर जैसा कि आपने आपका परिचय हमें बताया, तो यही सबसे पहले मैं कार्यक्रम में आपसे जानना चाहूंगी कि बच्चों के आहार में मौसमी फल और सब्जियों को शामिल करना क्यों जरूरी है।
1: देखिए, सब्जी और जो फल होते हैं जिसमें अधिकांश अपन बात करते हैं, अपन लोकल जो सब्जी यहाँ पर अवेलेबल होती है, तो वैसे अपन अपने बच्चों को ज्यादा न्यूट्रिशन मार्केट से खरीद के तो अपन दे नहीं पाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसमें जो अधिकांश चीजें जो बच्चों के पोषण के लिए जरूरी होती है वो अपन को लाइव मिलती है, जैसे कोई ऐसी सब्जी है, फल है, तो उसमें अपन को सबसे पहले यह देखना होता है कि यहाँ पे चूंकि जनजाति क्षेत्र है, लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती कि वो कुछ महंगी चीज खरीद के और अपना पोषण कर सके।
0: बिल्कुल,
1: तो अपन उनको एक सलाह ये देते हैं कि जो मार्केट के अंदर सीजन के अंदर जो सीजनल मिलता है उसमें होता क्या है कि सीजनल वेजिटेबल्स या सीजनल फ्रूट जो होता है वो आपको एक तो इजीली अवेलेबल हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: मार्केट में उस टाइम उसकी रेट कम होती है क्योंकि ऑफ सीजन वाले बाहर से आते हैं तो कॉस्टली पड़ते हैं।
0: बिल्कुल सर।
1: अब अपन बात करते हैं यहाँ के जैसे लोकल, अभी अपना जो खरीफ का जो सीजन चल रहा है अगस्त सेप्टेम्बर के अंदर जो चीज अपन को अवेलेबल होती है उसमें मोस्टली जो वेजिटेबल्स हैं जैसे कि आपका भिंडी है, बैंगन है, टमाटर है, उसके बाद में लीफी के अंदर अपन आ जाते हैं तो जैसे पालक अभी अवेलेबल हो जाती है अपने को यहाँ पर अधिकांश। तो अपन को पोषण के हिसाब से बच्चे को जैसे एक एवरेज माना जाए तो प्रतिदिन एक अगर स्वस्थ बच्चा है तो उसको कम से कम 200 से 300 ग्राम अकॉर्डिंग टू एज उसकी आवश्यकता होती है। तो उसमें भी अपन को ये होना चाहिए जैसे मिक्स वेज पे जाना चाहिए, जैसे 50 ग्राम के आसपास अपन उसको ट्यूबर जैसे जमीन से जो निकलने वाली जो होती है वो दी जाए, 50 ग्राम जो है वो लीफी दी जाए उसको, और बाकी में जैसे जो मार्केट में अवेलेबल हो।
0: बिल्कुल, तो सर जैसा कि आपने हमें बताया कि किस तरीके से बच्चों के आहार में हमें मौसमी फल शामिल करने चाहिए, यही आपने हमें ये बताया कि सितंबर माह में हमारे बांसवाड़ा क्षेत्र के आसपास कौन कौन सी स्थानीय फसलें हैं जो हमें मिलती है जिन्हें हम हमारे भोजन के तौर पर शामिल कर सकते हैं। यही सर अब मैं जानना चाहूंगी कि क्या मौसमी फल और सब्जियाँ दूसरे समय मिलने वाले फलों और सब्जियों की तुलना में अधिक पौष्टिक होते हैं।
1: जी हाँ, सीजनल फल और जो फिर सीजनल सब्जी होती है

0: दूसरा उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो शरीर के अंदर जितने भी अपने छोटे माइक्रो मिनरल्स होते हैं उसकी क्षतिपूर्ति उसी से हो जाती है।
1: जी बिल्कुल।
0: बच्चों में बढ़वार जब होती है तब उसके मसल्स डेवलपमेंट होता है, तब अपने को फाइबरस जो होते हैं रेशे वाली जो सब्जियां या फल होते हैं वो देने चाहिए। उसमें जैसे आपका भिंडी है,
1: बिल्कुल
0: भिंडी बच्चों को जितना ज्यादा हो सके खिलाना चाहिए। उसके बाद में आपके जो दूसरे फल जैसे कि टमाटर वगैरह जो होते हैं उनमें क्या विटामिन सी वगैरह जैसे ज्यादा होता है। जनरली अपने यहाँ पर बच्चों में क्या है जैसे स्किन डिजीज ज्यादा होती है।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो आप उनको फल में और सब्जी में ऐसी चीजें दोगे जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, जैसे नींबू वर्गीय जितना भी अपने यहाँ पर अवेलेबल होता है,
1: बिल्कुल,
0: तो उसके अंदर उसको एक तो विटामिन सी मिल जाता है। केला है जैसे, उसमें पोटेशियम वगैरह मिल जाता है बच्चे को। जमीकंद अपन जैसे यहाँ पर अपने आज मोस्टली इस सीजन में अभी गाजर मिल जाता है, मूली मिल जाती है,
1: बिल्कुल,
0: शकरकंद मार्केट में शायद आने लग गया, चुकंदर 12 महीने मिलता है अपने यहाँ पर, तो अपन ऐसी चीजों का भी उसके भोजन में समावेश कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आप हमें ढेर सारी बातों से अवगत करवा रहे हैं कि हम कौन कौन से फल सब्जियां बच्चों के खाने में शामिल कर सकते हैं, यही सर हम देखते हैं कि अक्सर लोगों को लगता है कि जो फल महंगा होता है वही ज्यादा पौष्टिक है, क्या ये बात सही है?
0: नहीं, ऐसा नहीं है। महंगा फल क्या है कि एक बोलते हैं ना एक अच्छा वो एक सिंबल बन गया है कि भाई हम ये चीज यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा वो नहीं होता है। अपन जैसे कहते हैं भाई लोगों को बादाम खिलाओ ये खिलाओ, आप उसको मूंगफली खिला के भी वो चीज दे सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और अभी जहां तक ट्रेंड्स आया है अभी पिछले कुछ सालों में अपने बांसवाड़ा जिले में मूंगफली होने लग गई है, जो कि पहले अपने यहाँ नहीं होती थी।
1: जी जी।
0: क्योंकि मोस्टली या तो गुजरात से मूंगफली आती थी या एमपी से आती थी।
1: बिल्कुल।
0: पर अब अपने यहाँ पर इस वागड़ क्षेत्र में भी मूंगफली लोग करने लग गए हैं।
1: बिल्कुल सर, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि महंगे फलों में ही पौष्टिकता हो, हमारे आसपास स्थानीय कई सारे ऐसे फल सब्जियां मौजूद हैं जिनमें भी पोषण है। यही सर, फल और सब्जियों को धोने से पहले उनका सही तरीका जानना जरूरी है, क्या गलत तरीके से धोने और काटने से पोषक तत्व प्रभावित हो सकते हैं?
0: देखो, धोने पर तो क्या है कि कोई भी फल हो चाहे वो लोकल हो या बाहर से मंगाया हुआ, उसको धोना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि प्रोडक्शन स्टेज पे भी आजकल क्या है कि लोग इंसेक्टिसाइड का उपयोग करने लगे हैं, जिसमें बहुत से इंसेक्टिसाइड ऐसे होते हैं जो कॉन्टेक्ट होते हैं, यानी कि स्प्रे करने के बाद में वो उसके ऊपर उसके अंश रह जाते हैं, तो ला के साफ पानी से 2 या 3 बार धो देना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: ताकि उसपे जो इंसेक्टिसाइड है, जो पाउडर है या हार्मफुल केमिकल है वो उसमें साफ हो जाए।
1: बिल्कुल।
0: दूसरा, काटने का जो तरीका है इसका वो कोई इतना वक्त है, वो बहुत कम ऐसे फ्रूट्स होते हैं जैसे कि एप्पल है। एप्पल को अपन जैसे वर्टिकल हमेशा काट के यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल कोई नहीं काटता उसको।
1: बिल्कुल।
0: तो वो क्या है कि उसमें प्रचुर मात्रा में आयरन वगैरह होने की वजह से अगर आपने उसको गलत तरीके से काट के रख दिया तो वो एकदम उसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लैक इन कलर में आ जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: जो खाने में ऑड लगता है थोड़ा सा। आपका जैसे पाइनएप्पल है, अगर आपने उसके सही तरीके से नहीं काटा तो उसके अंदर क्या है कि छोटे छोटे उसके अंदर कांटे होते हैं, वो गले में अटकने का जैसे डर होता है, तो उसको सही तरीके से काटोगे तो एक लाइन में उसके कांटे निकल जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जिनको अपन को सही तरीके से काट के ही यूज करना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि धोना तो फलों को बहुत जरूरी है, बस काटने की जो चीजें हैं वो हमें ध्यान रखने की जरूरत है। यही सर, स्थानीय किसानों से मौसमी फल और सब्जियां खरीदने से परिवार किसानों दोनों को क्या लाभ हो सकता है?
0: देखिए, स्थानीय खरीदने पर एक तो आपको क्या है कि स्थानीय फल और सब्जी सस्ता मिलेगा, इजीली अवेलेबल हो जाता है अपने यहाँ पर।
1: बिल्कुल।
0: और आम किसान या जैसे अपने यहाँ पर देखिए गरीब परिवार लोग हैं जिनकी परचेज पावर बहुत कम होती है, तो स्थानीय उनको अगर मिल जाएगा तो उनके लिए होता है कि भाई उनकी जो पारिवारिक जो उनकी आय है उसमें कुछ पैसा उनका बचत होता है।
1: बिल्कुल।
0: बाहर से अगर अपन कोई ऐसी सब्जी मंगा रहे हैं जो कॉस्टली पड़ रही है तो वो उसकी एक जो क्वांटिटी उनको चाहिए खाने के लिए वो पूरी क्वांटिटी वो लोग खा नहीं पाते हैं। अभी अपना जैसे एक लोकल यहाँ का आता है किकोड़ा करके, जो इस सीजन में मोस्टली पाया जाता है और जंगलों में ही होता है, तो आज स्थिति ये हो गई है कि वो लोग किकोड़ा लाते तो हैं पर खुद के खाने के बजाय वो मार्केट में सेल करते।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आप हमें बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, यही सर, फल और सब्जियों को बच्चों के आहार में शामिल करते समय माता पिता अक्सर कौन सी गलती कर देते हैं जिससे उन्हें बचना चाहिए?
0: देखिए, माता पिता तो गलती क्या है कि आजकल अपने यहाँ सब बच्चों के लिए अलग अलग सब्जी तो बनती नहीं है, तो जनरली होता क्या है कि जो परिवार के लिए बनती है वो उनको खाना होता है, तो इसके लिए जैसे मैंने पूर्व में भी बताया कि अपन को मिक्स वेज की तरफ जाना चाहिए।
1: बिल्कुल।

0: अपन जो जैसे मूंग की जैसे दाल बनाई, तो दाल से अपन को जैसे प्रोटीन मिल रहा है, तो उसके अंदर अपन ने पालक डाल दी,
1: बिल्कुल,
0: तो उनको वो न्यूट्रिएंट्स जो उसके अंदर हैं वो उसको मिल जाएंगे। वेजिटेबल्स जो अपन बनाते हैं वो मिक्स में बनाए, जैसे कि अपन आलू है, गोभी है, बैंगन है, टमाटर है, उसकी जो मिक्स सब्जी बनती है, तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स एक साथ उनको मिलते हैं।
1: बिल्कुल,
0: एक जैसी सब्जी बनाने से बजाय मिक्स वेजिटेबल पे अपन को ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि बच्चों को पूरा फल देना बेहतर है या जूस? जूस और पूरे फल में क्या अंतर होता है?
0: देखिए, जूस और फल दोनों अपने आप में पूर्णतया ही होते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनका जो गुदा होता है, अपन जैसे जूस निकालने के ऊपर क्या होता है, सिर्फ उसका जूस निकलता है, उसका गुदा अलग हो जाता है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसका गुदा भी अपने लिए फायदेमंद होता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जूस निकालने पर क्या होता है कि वो गुदा उससे अलग हो जाता है और उसके अंदर जो बेनिफिट एलिमेंट्स वगैरह होते हैं वो अपन को मिल नहीं पाते हैं। लेकिन जनरली जूस ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जैसे पूरा फल खा नहीं सकता, छोटा बच्चा या जैसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं कई बार जो नहीं खा पाते हैं, दांत वो नहीं कर पाते हैं, उनको अपन जूस के रूप में देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जूस तुरंत असर करता है बॉडी पे, और अगर साबुत फल खाया जाए तो वो कुछ समय पश्चात देता है।
1: बिल्कुल,
0: पर समय अपन को पूरा फल ही देना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, तो जैसा कि आपने कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों को बहुत अच्छी बातों से अवगत करवाया है, तो अंत में आप कार्यक्रम के माध्यम से हमारे माता पिता और श्रोता साथी जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे मौसमी फल और सब्जियों को लेकर?
0: मौसमी फल और सब्जी के बारे में है, अपने यहाँ पर जो अधिकांश जो लोग हैं जिनके पास में छोटी बहुत खेती जोत होती है, उनको सलाह दी जाती है कि वो अपने यहाँ पर एक तो छोटी मात्रा में किचन गार्डन अपने स्वयं के यहाँ तैयार करें, ताकि उन्हें रोजमर्रा के काम में आने वाली जो मौसमी सब्जियां हैं, अपने यहाँ पर जो फल पाया जाता है जैसे नींबू वर्गीय है तो नींबू लगाना चाहिए, अमरूद लगाना चाहिए, आम लगाने चाहिए। तो ये लगाने से क्या होता है कि इनको मार्केट से खरीदना नहीं होता है। पपाया है, केला है, ये अपने यहाँ पर पौधे लगा लें, ताकि कम कीमत पे इनको ये चीज उपलब्ध हो जाती है और इनको मार्केट से खरीदना नहीं होता है।
1: बिल्कुल,
0: और घर में पैदा हुई चीज है तो बच्चे क्या खा भी लेते हैं उसको।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हर किसी मार्केट से खरीद के खाना हर किसी के बस की बात नहीं होता है, इसलिए उन्हें किचन गार्डन या अपने घरों में छतों पे जहाँ पर भी इनको मिले ये अपने घर पे लगाना चाहिए अपने को।
1: बिल्कुल, तो सर जैसा कि आपने कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों को कई सारी महत्वपूर्ण बातों से अवगत करवाया है, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: धन्यवाद।
1: श्रोता साथियों, जैसा कि हमने बहुत ही सरल भाषा में जाना कि बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमेशा महंगी चीजों की तलाश करना जरूरी नहीं है, हमारे आसपास, हमारे मौसम, हमारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार मिलने वाले खाद्य पदार्थ भी बच्चों के संतुलित भोजन का हिस्सा बन सकते हैं। बच्चों की थाली को पौष्टिक बनाने के लिए किसी खास दिन का इंतजार न करें, मौसम में जो फल और सब्जियां उपलब्ध हो उन्हें साफ सफाई के साथ भोजन में शामिल करें, बच्चों को अलग अलग स्वाद और रंगों से परिचित कराएं और भोजन को लेकर उनकी पसंद और नापसंद को भी धीरे से समझें। याद रखिए, पौष्टिक भोजन हमेशा महंगा हो यह जरूरी नहीं, सही जानकारी और भोजन में विविधता ज्यादा मायने रखती है। तो जैसा कि बातें ढेर सारी हो गई हैं हमारी आपसे, अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेषर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: भाई न बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार कर रियो है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार कर रियो है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा, तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
1: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
2: हिंडो स्कूल जा, अपने अपना भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जो बातें करने वाले हैं वो विषय है संबंधों को सुंदर और सकारात्मक किस तरह से बनाए। जैसा कि कशिश, मनुष्य कितना भी सफल क्यों ना हो जाए उसके जीवन की सच्ची खुशी उसके संबंधों में छिपी होती है।
0: जी बिल्कुल।
1: परिवार हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, सहकर्मी हो, समाज के लोगों के साथ हमारे रिश्ते हमारे जीवन को भावनाओं, अपनापन और सुरक्षा से भर देते हैं।
0: जी हाँ।
1: घर बड़ा हो, साधन अधिक हो, सुविधाएं बहुत सारी हो, लेकिन अगर संबंधों में प्रेम, सम्मान और विश्वास न हो तो जीवन में खालीपन बना रहता है। वहीं सीमित साधनों में भी अगर परिवार और समाज के लोग एक दूसरे का साथ दें तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा साथियों से हमारी इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें होंगी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि हम अपने संबंधों को सुंदर और सकारात्मक कैसे बना सकते हैं। जागृति जी, कहा जाता है कि रिश्ते शब्द से नहीं बल्कि समझ से बनते हैं और विश्वास से निपटते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, शिक्षक, सहकर्मी, ऐसे कई लोग जो किसी न किसी रूप में हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन श्रोता साथियों, क्या सिर्फ किसी का हमारे जीवन में होना ही एक अच्छा रिश्ता होने के लिए काफी है? शायद नहीं। रिश्ते तभी खूबसूरत बनते हैं

0: जब उनमें सम्मान हो, विश्वास हो, संवाद हो और एक दूसरे को समझने की कोशिश हो। हम आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से उन रिश्तों की बात करेंगे जो हमारी जिंदगी को मजबूत बनाते हैं। छोटी छोटी आदतों की बात करेंगे जो हमारे संबंधों में मिठास लेकर आती है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। जैसे कि धन, संपत्ति और सफलता जीवन में सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन अच्छे संबंध मन को संतोष देते हैं। बचपन की यादों से लेकर जीवन की कठिन परिस्थितियों तक हमारे संबंधी हमारे साथ खड़े होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और जैसा कि माता पिता का स्नेह, भाई बहन का अपनापन, मित्र की दोस्ती, शिक्षक का मार्गदर्शन और पड़ोसी का सहयोग, ये सभी हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। इसलिए श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि संबंधों को बोझ नहीं बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण पूंजी समझना जरूरी है।
0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि युवा साथियों, हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम अकेले हमारा जीवन नहीं जी सकते। हमें अपने सुख दुख बांटने के लिए किसी की जरूरत होती है। जब हम खुश होते हैं तो कोई हमारे पास ऐसा चाहिए होता है जागृति जी, जिनके साथ हम अपनी खुशी साझा कर सके। और जब हम परेशान होते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति हमारे पास होना चाहिए जो बिना ज्यादा सवाल किए हमारी बात सुन सके।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, यही जरूरत हमारे रिश्तों को जन्म देती है। लेकिन आज की तेज जिंदगी में रिश्ते भी बदल रहे हैं। हमारे पास मोबाइल है, सोशल मीडिया है, मैसेजिंग ऐप है और बातचीत के हजारों साधन हैं। लेकिन कई बार दिल की बात कहने के लिए समय नहीं है जागृति जी। हम घंटों सोशल मीडिया पर रह सकते हैं लेकिन परिवार के किसी सदस्य से 10 मिनट बैठकर बात नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल,
0: हम दोस्तों की ऑनलाइन पोस्ट पर तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं लेकिन सामने बैठा दोस्त परेशान है या नहीं यह पूछना भूल जाते हैं।
1: जी हाँ
0: दोस्तों, यही हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है। कहा जाता है कि संबंधों की खूबसूरती इस बात से नहीं है कि हम कितने लोगों से जुड़े हुए हैं, बल्कि इस बात में है कि हमारे संबंध कितने सच्चे हैं और कितने संवेदनशील हैं।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि सकारात्मक संबंधों की पहली पाठशाला हमारा परिवार होता है। परिवार में जिस तरह का व्यवहार हम देखते हैं उसी तरह व्यवहार करना सीखते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए घर में प्रेम, सम्मान और सहयोग का वातावरण बनाना भी बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ,
1: बड़ों का सम्मान और छोटों के प्रति स्नेह परिवार को जोड़कर रखता है। अगर किसी सदस्य से गलती हो जाए तो उसे अपमानित करने के बजाय समझाने का प्रयास करना होगा।
0: बिल्कुल,
1: छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से दूरी बढ़ती है श्रोताओं, जबकि प्रेम से समझाने पर संबंध मजबूत होते हैं। कई रिश्ते बड़ी समस्याओं के कारण नहीं है कशिश, बल्कि बातचीत की कमी के कारण कमजोर पड़ जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और जब मन की बात समय पर समझा नहीं पाते हैं तो गलत फहमियां जन्म ले लेती है। इसलिए श्रोता साथियों, परिवार और मित्रों के साथ खुलकर बातचीत करें। केवल अपनी बात कहने की बजाय सामने वाले की बात को भी आप ध्यान से सुने। कई बार किसी व्यक्ति को समाधान नहीं केवल किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उसकी बात बिना टोके सुन सके।
0: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं साथियों कि सम्मान का मतलब केवल बड़े लोगों के पैर छूना या औपचारिक तरीके से बात करना नहीं होता।
1: बिल्कुल,
0: सम्मान का मतलब होता है कि सामने वाले की भावनाओं, विचारों, समय और व्यक्तित्व को भी हम महत्व दें। युवाओं के जीवन में अक्सर विचारों को लेकर परिवार के साथ मतभेद होते हैं जागृति।
1: बिल्कुल,
0: करियर का दबाव, पढ़ाई, दोस्ती, पहनावा, मोबाइल या जीवन शैली को लेकर अलग अलग सोच उनकी हो सकती है। लेकिन मतभेद होना गलत नहीं है। गलत तब होता है साथियों जब मतभेद के कारण हम सामने वाले का सम्मान करना ही छोड़ देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में हमारे युवा साथियों को यह सीखना होगा कि मैं आपसे अलग सोच रख सकता हूँ लेकिन आपकी बात का सम्मान भी कर सकता हूँ।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, यही सोच आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगी।
1: जी हाँ कशिश, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं संबंधों को सुंदर और सकारात्मक किस तरह से बनाए, तो ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों के साथ बनी रहेंगी।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ जागृति जी।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी कि हम संबंधों को सुंदर और सकारात्मक किस तरह से बनाएं।
1: बिल्कुल।
0: तो कहना चाहेंगे साथियों आपसे कि अच्छा संवाद केवल बोलने की कला नहीं है बल्कि समझने की कला भी है। कशिश, किसी भी रिश्ते में विश्वास बहुत जरूरी होता है। जहाँ विश्वास होता है वहाँ व्यक्ति अपने मन की बात आसानी से कह पाता है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन बार बार झूठ बोलना, वादा तोड़ना या किसी की निजी बात दूसरों से साझा करना विश्वास को कमजोर कर देता है।
1: जी,
0: हमें अपने शब्दों और व्यवहारों में ईमानदारी रखनी होगी। अगर किसी से कोई वादा किया है तो उसे निभाने का प्रयास भी करना होगा। विश्वास एक दिन में नहीं बनता, इसे समय, सच्चाई और अच्छे व्यवहार से धीरे धीरे मजबूत किया जाता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ अगर बात करें कि सुनना भी रिश्ते निभाने की एक कला है, तो श्रोता साथियों, हम सब चाहते हैं कि कोई ना कोई हमारी बात सुने। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम दूसरों की बात भी उतनी ही ध्यान से सुनते हैं? कई बार कोई व्यक्ति हमसे अपनी परेशानी साझा करता है और हम तुरंत उसे सलाह देने लगते हैं। जागृति जी, कभी कभी सामने वाले की सलाह नहीं सिर्फ एक सुनने वाला चाहिए होता है।
0: बिल्कुल।
1: युवाओं को ऐसे में खास तौर पर यह समझना होगा कि सुनना कमजोरी नहीं बल्कि संवेदनशीलता की पहचान है। साथियों, जब आपका दोस्त आपसे बात कर रहा हो तो फोन थोड़ी देर के लिए आप अलग रखिए।
0: जी हाँ।
1: उसकी बात पूरी होने दीजिए, बीच में अपनी बात कहनी शुरू मत कर दीजिए। किसी को यह एहसास दिलाना कि तुम्हारी बात मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ये रिश्ते को काफी हद तक सुंदर बना सकता है। जागृति जी।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि संबंधों में प्रेम जितना जरूरी है उतना ही सम्मान भी जरूरी है। किसी व्यक्ति की उम्र, आर्थिक स्थिति, शिक्षा या पद चाहे जो भी हो, हर व्यक्ति सम्मान का हकदार होता है।
1: बिल्कुल।
0: परिवार में महिलाओं, बुजुर्ग, बच्चों और युवाओं की बात को महत्व देना होगा। किसी की बात से सहमत न होने पर भी उसके विचारों का सम्मान किया जा सकता है। असहमति संबंध तोड़ने का कारण नहीं है श्रोताओं, बल्कि एक दूसरे को बेहतर समझने का अवसर हो सकती है।
1: बिल्कुल।
0: हम कह सकते हैं कशिश कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमेशा बड़े अवसरों की जरूरत नहीं होती है। किसी का हाल पूछ लेना, समय पर मदद कर देना, जन्मदिन याद रखना, थके हुए व्यक्ति के लिए पानी ला देना या परिवार के साथ कुछ समय बैठना, ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो संबंधों में बहुत बड़ी खुशी भर देती है।
1: बिल्कुल जागृति जी। साथ ही अगर विश्वास की बात की जाए तो किसी भी संबंध में विश्वास काफी महत्वपूर्ण होता है।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, विश्वास एक दिन में नहीं बनता, ये धीरे धीरे बनता है, हमारे व्यवहार से, हमारे शब्दों से और हमारे छोटे छोटे वादे निभाने से। अगर हमने किसी से कोई बात कही है तो उसे निभाने की कोशिश हमें करनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: अगर कोई बात साझा की गई है साथियों, तो उसकी निजता का भी सम्मान आप करें। खासकर दोस्ती में ये बहुत जरूरी होता है। जागृति जी, हम अपने दोस्त की व्यक्तिगत बातों को दूसरों के सामने चर्चा का विषय न बनाएं। श्रोता साथियों, विश्वास टूटने में कुछ पल लग सकते हैं लेकिन उसे दोबारा बनाने में बहुत समय लगता है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए रिश्तों को मजबूत बनाना है तो विश्वास को संभाल कर रखिए।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि हमारे जो शब्द हैं वो संबंध बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: साथियों, धन्यवाद, माफ कीजिए, आप कैसे हैं, मैं आपकी मदद करूं, ये जो छोटे छोटे शब्द हैं वो रिश्तों में अपनापन पैदा करते हैं। इसके विपरीत ही अपमानजनक शब्द दिल को चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे शब्द सामने वाले के मन पर कैसा प्रभाव डालेंगे। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है श्रोताओं, हम सभी से कभी न कभी कोई न कोई गलती तो होती है। इसलिए जहाँ उचित हो वहाँ पुरानी गलतियों को छोड़कर आगे बढ़ने की भावना रखनी चाहिए। क्षमा का अर्थ गलत व्यवहार को सही मान लेना नहीं है, इसका अर्थ ये है कि हम अपने मन में नकारात्मकता को हमेशा के लिए जगह न दें और स्वस्थ तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करें।
1: जी हाँ जागृति जी। साथी दोस्तों, आज सोशल मीडिया ने तुलना को काफी हद तक बढ़ा दिया है।
0: बिल्कुल।
1: हम देखते हैं कि किसी दोस्त की जिंदगी में कितनी चीजें अच्छी चल रही हैं, कोई कितना सफल है, किसके कितने दोस्त हैं या किसी का परिवार कितना खुश दिखाई देता है, ये सभी हम देखने लगे हैं। लेकिन हमें ऐसे में याद रखना चाहिए कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली जिंदगी पूरी जिंदगी नहीं होती।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह दोस्तों, रिश्तों में भी तुलना नहीं करनी चाहिए कि जैसे देखो कि तुम्हारा भाई ऐसा करता है, देखो उसकी दोस्ती कितनी अच्छी है, देखो तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो। श्रोता साथियों, ऐसे जो वाक्य होते हैं वो रिश्तों में दूरी पैदा कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: आप याद रखिए कि हर व्यक्ति अलग है और हर रिश्ता अपनी जगह खास होता है। कभी कभी जागृति जी, रिश्तों में गलती हमारी भी होती है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अहंकार हमें सॉरी कहने से रोक देता है। हमें लगता है कि पहले सामने वाला माफी मांगे।
0: जी हाँ।
1: लेकिन दोस्तों, अगर रिश्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो सिर्फ ये साबित करने के लिए गलती किसकी थी रिश्ता खराब करना समझदारी नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: अगर गलती हुई है तो सच्चे मन से कहिए कि हाँ, मुझसे गलती हुई है।
0: जी हाँ।
1: और मुझे इसका अफसोस है। श्रोता साथियों, एक छोटी सी सच्ची माफी कई बार बड़ी दूरी को कम कर सकती है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि संबंध जीवन के वे रंग है जिनके बिना सफलता की तस्वीर अधूरी लगती है। हमारे पास कितनी संपत्ति है, कितनी बड़ी उपलब्धियां हैं या हमारा जीवन कितना सुविधापूर्ण है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हमारे सुख दुख में हमारे साथ कौन खड़ा है और हम दूसरों के लिए कितने संवेदनशील हैं।
1: बिल्कुल,
0: आज आवश्यकता इस बात की श्रोता साथियों कि हम रिश्तों को केवल निभाने की जिम्मेदारी न समझें, बल्कि उन्हें प्रेम, विश्वास, सम्मान और सकारात्मक सोच से सींचे। मोबाइल की स्क्रीन से थोड़ा बाहर निकलकर अपनों की आंखों में देखें, उनकी बातों को सुने, उनके साथ समय बिताए और उनकी भावनाओं को समझे। याद रखिये श्रोताओं, रिश्ते शब्दों से नहीं व्यवहार से सुंदर बनते हैं, विश्वास से मजबूत होते हैं और प्रेम से जीवित रहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए आप अपने मन से एक बात कहिए कि जहाँ नाराजगी है वहाँ संवाद आप जरूर करेंगे, जहाँ दूरी है वहाँ अपनापन बढ़ाएंगे, जहाँ गलत फहमी है वहाँ सच्चाई से बात करेंगे, जहाँ जरूरत होगी वहाँ सहयोग का साथ बढ़ाएंगे और जहाँ रिश्ता है वहाँ उसे सम्मान के साथ निभाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि एक सुंदर घर केवल दीवारों से नहीं बनता, सुंदर संबंधों से बनता है, और एक मजबूत समाज केवल योजनाओं से नहीं बनता, एक दूसरे के प्रति विश्वास और सहयोग से बनता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में बातें हमारे युवा साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी हैं।
0: बिल्कुल,
1: और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे युवाओं को यहाँ पर एक और गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए साथी सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत।

0: हमसे जो भी बातें हुई वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारश।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है स्वस्थ समाज के लिए सुरक्षित और जागरूक स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं अंजलि कि किसी भी समाज की असली ताकत उसकी ऊंची इमारतों, बड़ी सड़कों या आर्थिक संपन्नता से नहीं, बल्कि उसके स्वस्थ नागरिकों से पहचानी जाती है। जिस समाज का व्यक्ति स्वस्थ है वो परिवार को मजबूत बनाता है, अपने काम को बेहतर ढंग से

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है स्वस्थ समाज के लिए सुरक्षित और जागरूक स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि किस तरीके से जिस समाज का व्यक्ति अगर स्वस्थ रहता है तो वह परिवार और समाज को मजबूत बनाता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि श्रोता साथियों, हम अक्सर बीमारी होने के बाद इलाज के बारे में सोचते हैं, जबकि स्वास्थ्य की सही व्यवस्था वह है जिसमें बीमारी आने से पहले ही उससे बचाव की तैयारी हो।
0: जी हाँ,
1: सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ भोजन, साफ सफाई, टीकाकरण, समय पर स्वास्थ्य जांच, सही जानकारी और नजदीक उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं, ये सभी एक सुरक्षित स्वास्थ्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण आधार है।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, आज आवश्यकता केवल अस्पतालों की संख्या बढ़ाने की नहीं बल्कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने की है। जब परिवार स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है, समुदाय मिलकर स्वच्छता और पोषण पर ध्यान देता है और स्वास्थ्य सेवाएं समय पर और सुरक्षित रूप से उपलब्ध होती है, तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण संभव होता है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि स्वास्थ्य का अर्थ केवल ये नहीं है कि व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति वो है जो शारीरिक रूप से सक्षम है, मानसिक रूप से संतुलित है और सामाजिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग ले सके।
1: बिल्कुल,
0: कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति बाहर से स्वस्थ तो दिखाई देता है लेकिन वो लगातार तनाव, चिंता, नींद की कमी या गलत खानपान जैसी समस्याओं से गुजर रहा होता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए स्वास्थ्य को व्यापक दृष्टि से समझना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बचपन से ही शुरू होनी चाहिए। श्रोताओं, बच्चों को हाथ धोने के बारे में बताना, स्वच्छ भोजन करने के बारे में बताना, पर्याप्त पानी पीने के बारे में बताना, साफ वातावरण रखने और अपनी परेशानी परिवार या शिक्षक को बताने की आदत सिखाई जानी चाहिए।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही बात करें सुरक्षित स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों जरूरी है, तो श्रोता साथियों, स्वास्थ्य व्यवस्था तभी सुरक्षित मानी जाएगी जब जरूरत पड़ने पर व्यक्ति को सही जानकारी, सही सलाह और उचित स्वास्थ्य सेवा समय पर मिल सके।
0: जी हाँ,
1: गांव और दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच कई बार चुनौतीपूर्ण होती है। ऐसे में श्रोता साथियों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
0: जी हाँ,
1: स्वास्थ्य व्यवस्था का उद्देश्य श्रोता साथियों केवल गंभीर बीमारी का इलाज करना नहीं होता बल्कि लोगों को बीमारी से बचाने के लिए पहले से जागरूक करना भी होता है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बात है इलाज से बेहतर बचाव। अगर हम साफ पानी पिएंगे, भोजन को ढककर रखेंगे, हाथों को साबुन से धोएंगे, आसपास पानी जमा न होने देंगे और स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो कई संक्रामक बीमारियों से बचाव किया जा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: इसी तरह श्रोता साथियों, नियमित स्वास्थ्य जांच से कई समस्याओं का समय रहते पता लगाया जा सकता है। बीमारी को शुरुआती अवस्था में पहचानना उपचार को आसान बना सकता है। इसीलिए स्वास्थ्य व्यवस्था का पहला कदम लोगों को रोकथाम के बारे में जागरूक करना होना चाहिए।
1: जी हाँ जागृति जी, यही बात करें स्वच्छता और स्वास्थ्य के गहरे रिश्ते की, तो श्रोता साथियों, जहाँ

0: स्वच्छता होती है वहाँ स्वास्थ्य की सुरक्षा मजबूत होती है।
1: जी हाँ।
0: घर, स्कूल, आंगन, खेत और सार्वजनिक स्थानों की सफाई केवल सुंदरता के लिए नहीं बल्कि बीमारी से बचाव के लिए भी जरूरी है। कचरे का सही निस्तारण, शौचालय का उपयोग, साफ पानी की व्यवस्था और मच्छरों के प्रजनन स्थलों को रोकना सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल।
0: एक व्यक्ति अपने घर को साफ रखकर शुरुआत कर सकता है, लेकिन जब पूरा गांव मिलकर स्वच्छता अपनाता है तब उसका प्रभाव कहीं अधिक बड़ा होता है।
1: जी हाँ अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं स्वस्थ समाज के लिए सुरक्षित और जागरूक स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, तो ये बातें निरंतर आगे यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें पोषण है स्वास्थ्य की नींव को लेकर। तो श्रोता साथियों, स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार जरूरी होता है। भोजन में अनाज, दालें, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध और उसके विकल्प, स्थानीय उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल किए जा सकते हैं। बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए पोषण का विशेष महत्व होता है।
1: बिल्कुल,
0: कुपोषण केवल शरीर को कमजोर नहीं करता जागृति जी, बल्कि बच्चों के विकास और सीखने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए परिवारों को भोजन की मात्रा के साथ उसकी गुणवत्ता और विविधता पर भी ध्यान देना चाहिए।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे देश का भविष्य है और उनके स्वस्थ विकास के लिए पौष्टिक भोजन, स्वच्छता, टीकाकरण, पर्याप्त नींद, शारीरिक गतिविधि और समय पर स्वास्थ्य जांच बहुत जरूरी होती है। हम देखते हैं कि स्कूलों में स्वास्थ्य और स्वच्छता की जानकारी को व्यवहार से जोड़ा जाता है। केवल किताब में पढ़ना पर्याप्त नहीं श्रोताओं, बच्चों को हाथ धोने के लिए, साफ पानी पीने के लिए और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने का अभ्यास भी कराया जाना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: अगर अंजलि बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, कमजोरी महसूस कर रहा है या उसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, तो हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि परिवार वालों को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
0: जी हाँ,
1: परिवार के स्वास्थ्य में महिलाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन अक्सर महिलाएं अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को प्राथमिकता नहीं देती है। महिलाओं को नियमित स्वास्थ्य जांच करवानी होगी, पोषण का ध्यान रखना होगा, स्वच्छता और अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में सही जानकारी मिलना भी बहुत जरूरी है। श्रोताओ, महिला का स्वास्थ्य केवल उसका व्यक्तिगत विषय नहीं होना चाहिए। स्वस्थ महिला परिवार और समुदाय को मजबूत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है।
0: जी हाँ जागृति जी, यही बात करें बुजुर्गों के लिए संवेदनशील स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो श्रोता साथियों, बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ परिवार के सहयोग और सम्मान की भी आवश्यकता होती है।
1: जी हाँ,
0: उम्र बढ़ने के साथ नियमित जांच, दवाओं के सही उपयोग, संतुलित भोजन और सुरक्षित दैनिक जीवन पर ध्यान देना जरूरी है। परिवार के सदस्यों को बुजुर्गों की बात जो है वो ध्यान से सुननी चाहिए और उसकी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बुजुर्गों की देखभाल केवल जिम्मेदारी नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि परिवार के संस्कारों की पहचान भी है।
1: बिल्कुल,
0: आज हमारे हाथों में मोबाइल है, इंटरनेट पर स्वास्थ्य से जुड़ी हजारों जानकारियां उपलब्ध हैं, लेकिन हर जानकारी सही हो यह जरूरी नहीं है। बिना जांचे किसी भी स्वास्थ्य संदेश पर विश्वास करना या किसी की सलाह पर दवा लेना नुकसानदायक हो सकता है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए स्वास्थ्य संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय के लिए योग्य स्वास्थ्य कर्मी या चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। जागरूक व्यक्ति वही है जागृति जी, जो जानकारी प्राप्त करता है लेकिन उसे समझदारी से परख कर ही अपनाता है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आपने स्वास्थ्य जानकारी में जागरूकता किस तरह से जरूरी है इसको लेकर हमारे श्रोता साथियों को बताया, तो यही हम जानते हैं कि दवाओं का सुरक्षित उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं। जैसा कि स्वास्थ्य व्यवस्था की सुरक्षा में दवाओं का सही उपयोग भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर हो या स्वास्थ्य कर्मी द्वारा बताई गई दवा का उपयोग निर्देश के अनुसार किया जाना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: दूसरे व्यक्ति की दवा अपने आप लेना या बीमारी के लक्षण देखकर स्वयं उपचार शुरू कर देना उचित नहीं है श्रोताओं। दवाओं को बच्चों की पहुंच से दूर रखना और उनके उपयोग संबंधी जानकारी को समझना भी जरूरी है। स्वास्थ्य में छोटी सी

0: लापरवाही श्रोताओं कभी कभी बड़ी समस्या बन सकती है।
1: जी हाँ जागृति जी, यही अब बात आती है मानसिक स्वास्थ्य को भी समझना होगा।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, स्वास्थ्य की चर्चा में मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तनाव, चिंता, लगातार उदासी, नींद में बदलाव या मन पर बढ़ता दबाव भी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकता है। ऐसे समय में व्यक्ति को अकेला छोड़ने के बजाय परिवार और भरोसेमंद लोगों से बात करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
0: जी हाँ,
1: जरूरत होने पर योग्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि श्रोता साथियों, एक जागरूक समाज वही होता है जहाँ व्यक्ति अपनी मानसिक परेशानियों के बारे में बिना डर और शर्म के सहायता मांग सके। स्वास्थ्य केवल अस्पताल की जिम्मेदारी नहीं है, स्वस्थ समाज बनाने में समुदाय की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।
0: बिल्कुल,
1: गांव में स्वास्थ्य संबंधित बैठकें, स्वच्छता अभियान, पोषण जागरूकता, स्वास्थ्य शिविरों और जन जागरूकता कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। यदि किसी गांव में पानी की समस्या है, कचरा जमा होता है या किसी बीमारी का खतरा बढ़ रहा है, तो समुदाय को मिलकर संबंधित विभाग तक बात पहुंचानी चाहिए। यही सामुदायिक भागीदारी जागृति जी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाती है।
2: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था तभी प्रभावी होगी जब लोगों का स्वास्थ्य सेवाओं पर विश्वास हो। इसके लिए स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई, उचित व्यवहार, आवश्यक जानकारी और समय पर सेवा उपलब्ध होना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
2: दूसरी ओर नागरिकों को भी स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सहयोग करना चाहिए और स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारी साझा करनी चाहिए। विश्वास और सहयोग से ही स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होती है। साथ ही सामुदायिक रेडियो की क्या भूमिका हो सकती है, इसको लेकर हमारे श्रोता साथियों का अंजलि हम बताएं तो स्वास्थ्य जागरूकता को गांव-गांव तक पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है और बन भी रहा है। रेडियो स्थानीय भाषा और स्थानीय संदर्भ में स्वास्थ्य संबंधी उपयोगी जानकारी लोगों तक पहुँचा सकते हैं। जैसा की अंजलि, हम हमारे वागर रेडियो के माध्यम से स्वच्छता को लेकर, पोषण को लेकर, टीकाकरण, मौसमी बीमारियों, बचाव, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में देते हैं।
0: बिल्कुल,
2: श्रोता अपनी समस्या और अनुभव साझा भी कर सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी संवाद दो तरफा बनता है। इस तरह श्रोता साथियों, हम कह सकते हैं कि सामुदायिक रेडियो केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता का मजबूत मंच बन सकता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि आज तकनीक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को आसान बनाने में मदद कर रही है।
2: बिल्कुल,
1: मोबाइल के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है और कई सेवाओं के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन तकनीक का उपयोग करते समय सावधानी जरूरी है। इंटरनेट पर उपलब्ध हर स्वास्थ्य सलाह को सही नहीं माना जाना चाहिए। तकनीक तभी उपयोगी है जब वह सही जानकारी को सही व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद करे।
2: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, स्वस्थ समाज की शुरुआत सरकार या अस्पताल से नहीं बल्कि हमारे अपने व्यवहार से होती है। हम साफ पानी का उपयोग करें, भोजन को सुरक्षित रखें, हाथ धोने की आदत अपनाएं, घर और आसपास स्वच्छता रखें, स्वास्थ्य समस्या होने पर समय पर सलाह लें और गलत स्वास्थ्य जानकारी को आगे न बढ़ाएं। एक व्यक्ति की अच्छी आदत दूसरे व्यक्ति को प्रेरित कर सकती है और धीरे धीरे पूरा समुदाय स्वस्थ व्यवहार अपना सकता है।
2: बिल्कुल अंजलि, तो हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कह सकते हैं कि स्वस्थ समाज का निर्माण केवल अस्पताल और दवाओं से नहीं होता है। इसके लिए सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं, जागरूक नागरिक, स्वच्छ वातावरण, पौष्टिक भोजन, समय पर स्वास्थ्य जांच और सामुदायिक भागीदारी, इन सभी का साथ बहुत जरूरी है।
0: जी जी,
2: हमें स्वास्थ्य को बीमारी के बाद शुरू होने वाली प्रक्रिया नहीं बल्कि रोजमर्रा के जीवन शैली का हिस्सा बनाना होगा। परिवार अपने स्तर पर जागरूक हो, स्कूल बच्चों में स्वास्थ्य की अच्छी आदतें विकसित करें, गाँव सामूहिक रूप से स्वच्छता और पोषण पर काम करे और स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक समय पर पहुंचे, तभी स्वस्थ समाज का सपना साकार होगा। याद रखिए श्रोता साथियों, स्वास्थ्य किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे समाज की साझी जिम्मेदारी है। जब एक परिवार जागरूक होता है अंजलि, तो एक घर सुरक्षित होता है।
0: बिल्कुल,
2: जब पूरा गांव जागरूक होता है तो पूरा समुदाय सुरक्षित होता है, और जब पूरा समाज स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता बना लेता है तब एक मजबूत और स्वस्थ राष्ट्र की नींव तैयार होती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि बीमारी का इंतजार करने के बजाय स्वास्थ्य की तैयारी करनी चाहिए। जानकारी को जागरूकता बनाएं, जागरूकता को अच्छे व्यवहार में बदलें और अच्छे व्यवहार को पूरे समाज की ताकत बनाएं। स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ समाज, मजबूत राष्ट्र, यही हमारे सबकी कामना रहेगी।
2: जी हाँ, इसी उम्मीदों के साथ आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारश्र
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका पसंदीदा रेडियो स्टेशन वाग रेडियो 90.8 FM, जहां हर लम्हा है खास और हर कार्यक्रम में है ढेर सारी जानकारी और मस्ती। संध्याकालीन सभा में आप सभी का स्वागत करती हूं और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में आप सुनेंगे कार्यक्रम आराधना। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 5 बजे भक्ति और श्रद्धा के साथ में। 5:30 पर शुरू होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज। युवाओं की आवाज कार्यक्रम में जहां युवा सोच, जोश और बदलाव की बातें होंगी सिर्फ आपके लिए, और इस कार्यक्रम को लेकर आएंगे हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी के मैं और महक सोनी। शाम 6 बजे आप सुनिए सच्चा बचपन, मासूमियत कहानी और सीख से भरी प्यारी सी घड़ी। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर और अंजलि पाराशर। साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे आजादी के सही मायने और जिम्मेदारियों की बातें। साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है महिलाओं से जुड़ा विशेष कार्यक्रम घूमर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारी बहनों की कहानियाँ, उनकी प्रेरणा के बारे में जान पाएंगे। आगे बढ़ते हुए सुनेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर और इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है नई पुरानी गजलें। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे 9 बजे से 10 बजे के बीच में। तो साथियों, ये थी हमारी संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना।

0: आज के सुविचार।
1: प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा क्षण अवश्य आता है जब सारे स्वप्न, सारी आशाएं, सारे दृश्य ध्वस्त हो जाते हैं। जीवन के सारे आयोजन ही बिखर जाते हैं। एक और धर्म होता है और दूसरी ओर सुख। किसी को धर्म संकट कहते हैं जब धर्म का वहन ही संकट हो और धर्म का त्याग ही दुख हो। विचार कीजिए, कभी किसी स्वजन के विरुद्ध सत्य बोलने का अवसर प्राप्त हो जाता है, कभी ठीक दरिद्रता के समय सरलता से चोरी करने का मार्ग प्राप्त हो जाता है, कभी किसी शक्तिशाली राजनेता या राजा के कर्मचारी का अधर्म प्रकट हो जाता है। सबके जीवन में ऐसी घटना बनती ही रहती है। अधिकतर लोग ऐसे किसी क्षण को धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं पाते। हमें किसी प्रकार के संघर्ष का अनुभव ही नहीं होता। सहजता से सुख की ओर खींचे चले जाते हैं जैसे मक्खी गुड़ की ओर खींची चली जाती। वास्तव में धर्म संकट का क्षण ईश्वर के निकट जाने का क्षण होता है। यदि हम संघर्षों से भयभीत ना, सुख की ओर आकर्षित ना, अपने धर्म पर दृढ़ रहे तो ईश्वर का साक्षात्कार दूर नहीं। पवन से युद्ध करने वाला पत्ता यदि पेड़ से गिरता है तो भी आकाश की ओर उठता है। पवन से झुकने वाली घास वहीं भूमि पर रह जाती है। अर्थात धर्म संकट से यदि हम संकट को ही टाल दें तो सुख तो मिलता है, जीवन बढ़ता है, किंतु क्या चरित्र नहीं टूटता? क्या आत्मा दरिद्र नहीं हो जाती? क्या ईश्वर से अंतर नहीं हो जाता? स्वयं विचार की। दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करते हैं। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि इन सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं। और यदि अनजाने में भी कोई अन्य व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है, क्या हमने कभी विचार किया? सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते, अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोपते, अर्थात किसी की स्वतंत्रता का अस्वीकार करते हैं। और जब स्वतंत्रता का अस्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय दुख से भर जाता है, और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देह है, क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं?
0: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व अनुकरो भोजन होवे, क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनु, आ लक्षण आपड़ने आपड़े में देखाए तो आपड़ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सेहत नु राज मुंह है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिंदगी पर बात की शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सी व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवन, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगाव, जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा।
2: होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
4: नाना अंजलि बोन हूँ था का?
1: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुके जागा।
4: ओ अंजलि बोन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
4: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
1: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

बहनों, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित्ती जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जो बातें करने वाले हैं वो विषय है संबंधों को सुंदर और सकारात्मक किस तरह से बनाए। जैसा कि कशिश, मनुष्य कितना भी सफल क्यों ना हो जाए, उसके जीवन की सच्ची खुशी उसके संबंधों में छिपी होती है।
0: जी बिल्कुल।
1: परिवार हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, सहकर्मी हो, समाज के लोगों के साथ हमारे रिश्ते हमारे जीवन को भावनाओं, अपनापन और सुरक्षा से भर देते हैं।
0: जी हाँ।
1: घर बड़ा हो, साधन अधिक हो, सुविधाएं बहुत सारी हो, लेकिन अगर संबंधों में प्रेम सम्मान और विश्वास न हो तो जीवन में खालीपन बना रहता है। वहीं सीमित साधनों में भी अगर परिवार और समाज के लोग एक दूसरे का साथ दें तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा साथियों से हमारी इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें होंगी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि हम अपने संबंधों को सुंदर और सकारात्मक कैसे बना सकते हैं। जागृति जी, कहा जाता है कि रिश्ते शब्द से नहीं बल्कि समझ से बनते हैं और विश्वास से निपटते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, शिक्षक, सहकर्मी, ऐसे कई लोग जो किसी न किसी रूप में हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन श्रोता साथियों, क्या सिर्फ किसी का हमारे जीवन में होना ही एक अच्छा रिश्ता होने के लिए काफी है? शायद नहीं। रिश्ते तभी खूबसूरत बनते हैं जब उनमें सम्मान हो, विश्वास हो, संवाद हो और एक दूसरे को समझने की कोशिश हो। हम आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हीं रिश्तों की बात करेंगे जो हमारी जिंदगी को मजबूत बनाते हैं। छोटी छोटी आदतों की बात करेंगे जो हमारे संबंधों में मिठास लेकर आती है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। जैसे कि धन, संपत्ति और सफलता जीवन में सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन अच्छे संबंध मन को संतोष देते हैं। बचपन की यादों से लेकर जीवन की कठिन परिस्थितियों तक हमारे संबंधी हमारे साथ खड़े होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और जैसा कि माता पिता का स्नेह, भाई बहन का अपनापन, मित्र की दोस्ती, शिक्षक का मार्गदर्शन और पड़ोसी का सहयोग, ये सभी हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि संबंधों को बोझ नहीं बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण पूंजी समझना जरूरी है।
0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि युवा साथियों, हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं।
1: बिल्कुल।
0: हम अकेले हमारा जीवन नहीं जी सकते, हमें अपने सुख दुख बांटने के लिए किसी की जरूरत होती है। जब हम खुश होते हैं तो कोई हमारे पास ऐसा चाहिए होता है जागृति जी, जिनके साथ हम अपनी खुशी साझा कर सके। और जब हम परेशान होते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति हमारे पास होना चाहिए जो बिना ज्यादा सवाल किए हमारी बात सुन सके।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, यही जरूरत हमारे रिश्तों को जन्म देती है। लेकिन आज की तेज जिंदगी में रिश्ते भी बदल रहे हैं। हमारे पास मोबाइल है, सोशल मीडिया है, मैसेजिंग ऐप है और बातचीत के हजारों साधन हैं। लेकिन कई बार दिल की बात कहने के लिए समय नहीं है जागृति जी। हम घंटों सोशल मीडिया पर रह सकते हैं लेकिन परिवार के किसी सदस्य से 10 मिनट बैठकर बात नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल।
0: हम दोस्तों की ऑनलाइन पोस्ट पर तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, लेकिन सामने बैठा दोस्त परेशान है या नहीं यह पूछना भूल जाते हैं।
1: जी हाँ
0: दोस्तों, यही हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है। कहा जाता है कि संबंधों की खूबसूरती इस बात से नहीं है कि हम कितने लोगों से जुड़े हुए हैं, बल्कि इस बात में है कि हमारे संबंध कितने सच्चे हैं और कितने संवेदनशील हैं।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि सकारात्मक संबंधों की पहली पाठशाला हमारा परिवार होता है। परिवार में जिस तरह का व्यवहार हम देखते हैं उसी तरह व्यवहार करना सीखते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए घर में प्रेम, सम्मान और सहयोग का वातावरण बनाना भी बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ,
1: बड़ों का सम्मान और छोटों के प्रति स्नेह परिवार को जोड़कर रखता है। अगर किसी सदस्य से गलती हो जाए तो उसे अपमानित करने के बजाय समझाने का प्रयास करना होगा।
0: बिल्कुल।
1: छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से दूरी बढ़ती है श्रोताओं, जबकि प्रेम से समझाने पर संबंध मजबूत होते हैं। कई रिश्ते बड़ी समस्याओं के कारण नहीं है कशिश, बल्कि बातचीत की कमी के कारण कमजोर पड़ जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और जब मन की बात समय पर समझा नहीं पाते हैं तो गलतफहमियां जन्म ले लेती है। इसलिए श्रोता साथियों, परिवार और मित्रों के साथ खुलकर बातचीत करें। केवल अपनी बात कहने के बजाय सामने वाले की बात को भी आप ध्यान से सुने। कई बार किसी व्यक्ति को समाधान नहीं केवल किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उसकी बात बिना टोके सुन सके।
0: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं साथियों

0: के सम्मान का मतलब केवल बड़े लोगों के पैर छूना या औपचारिक तरीके से बात करना नहीं होता।
1: बिल्कुल,
0: सम्मान का मतलब होता है कि सामने वाले की भावनाओं, विचारों, समय और व्यक्तित्व को भी हम महत्व दें। युवाओं के जीवन में अक्सर विचारों को लेकर परिवार के साथ मतभेद होते हैं जागृति।
1: बिल्कुल,
0: करियर का दबाव, पढ़ाई, दोस्ती, पहनावा, मोबाइल या जीवन शैली को लेकर अलग अलग सोच उनकी हो सकती है। लेकिन मतभेद होना गलत नहीं है। गलत तब होता है साथियों, जब मतभेद के कारण हम सामने वाले का सम्मान करना ही छोड़ देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में हमारे युवा साथियों को ये सीखना होगा कि मैं आपसे अलग सोच रख सकता हूँ, लेकिन आपकी बात का सम्मान भी कर सकता हूँ।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, यही सोच आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगी।
1: जी हाँ कशिश, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं, संबंधों को सुंदर और सकारात्मक किस तरह से बनाए, तो ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों के साथ बनी रहेंगी। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ जागृति जी।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी कि हम संबंधों को सुंदर और सकारात्मक किस तरह से बनाएं।
1: बिल्कुल।
0: तो कहना चाहेंगे साथियों आपसे कि अच्छा संवाद केवल बोलने की कला नहीं है बल्कि समझने की कला भी है। कशिश, किसी भी रिश्ते में विश्वास बहुत जरूरी होता है। जहाँ विश्वास होता है वहाँ व्यक्ति अपने मन की बात आसानी से कह पाता है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन बार बार झूठ बोलना, वादा तोड़ना या किसी की निजी बात दूसरों से साझा करना विश्वास को कमजोर कर देता है।
1: जी,
0: हमें अपने शब्दों और व्यवहारों में ईमानदारी रखनी होगी। अगर किसी से कोई वादा किया है तो उसे निभाने का प्रयास भी करना होगा। विश्वास एक दिन में नहीं बनता, इसे समय, सच्चाई और अच्छे व्यवहार से धीरे धीरे मजबूत किया जाता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ अगर बात करें कि सुनना भी रिश्ते निभाने की एक कला है, तो श्रोता साथियों, हम सब चाहते हैं कि कोई ना कोई हमारी बात सुने, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम दूसरों की बात भी उतनी ही ध्यान से सुनते हैं? कई बार कोई व्यक्ति हमसे अपनी परेशानी साझा करता है और हम तुरंत उसे सलाह देने लगते हैं। जागृति जी, कभी कभी सामने वाले की सलाह नहीं, सिर्फ एक सुनने वाला चाहिए होता है।
0: बिल्कुल।
1: युवाओं को ऐसे में खास तौर पर यह समझना होगा कि सुनना कमजोरी नहीं बल्कि संवेदनशीलता की पहचान है। साथियों, जब आपका दोस्त आपसे बात कर रहा हो तो फोन थोड़ी देर के लिए आप अलग रखिए।
0: जी हाँ।
1: उसकी बात पूरी होने दीजिए, बीच में अपनी बात कहनी शुरू मत कर दीजिए। किसी को यह एहसास दिलाना कि तुम्हारी बात मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ये रिश्ते को काफी हद तक सुंदर बना सकता है। जागृति जी।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि संबंधों में प्रेम जितना जरूरी है उतना ही सम्मान भी जरूरी है। किसी व्यक्ति की उम्र, आर्थिक स्थिति, शिक्षा या पद, चाहे जो भी हो, हर व्यक्ति सम्मान का हकदार होता है।
1: बिल्कुल।
0: परिवार में महिलाओं, बुजुर्ग, बच्चों और युवाओं की बात को महत्व देना होगा। किसी की बात से सहमत न होने पर भी उसके विचारों का सम्मान किया जा सकता है। असहमति संबंध तोड़ने का कारण नहीं है श्रोताओं, बल्कि एक दूसरे को बेहतर समझने का अवसर हो सकती है।
1: बिल्कुल।
0: हम कह सकते हैं कशिश कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमेशा बड़े अवसरों की जरूरत नहीं होती है। किसी का हाल पूछ लेना, समय पर मदद कर देना, जन्मदिन याद रखना, थके हुए व्यक्ति के लिए पानी ला देना या परिवार के साथ कुछ समय बैठना, ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो संबंधों में बहुत बड़ी खुशी भर देती है।
1: बिल्कुल जागृति जी। साथ ही अगर विश्वास की बात की जाए तो किसी भी संबंध में विश्वास काफी महत्वपूर्ण होता है।
0: बिल्कुल।
1: दोस्तों, विश्वास एक दिन में नहीं बनता, ये धीरे धीरे बनता है, हमारे व्यवहार से, हमारे शब्दों से और हमारे छोटे छोटे वादे निभाने से। अगर हमने किसी से कोई बात कही है तो उसे निभाने की कोशिश हमें करनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: अगर कोई बात साझा की गई है साथियों, तो उसकी निजता का भी सम्मान आप करें। खासकर दोस्ती में यह बहुत जरूरी होता है जागृति जी। हम अपने दोस्त की व्यक्तिगत बातों को दूसरों के सामने चर्चा का विषय न बनाएं। श्रोता साथियों, विश्वास टूटने में कुछ पल लग सकते हैं, लेकिन उसे दोबारा बनाने में बहुत समय लगता है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए रिश्तों को मजबूत बनाना है तो विश्वास को संभाल कर रखिए।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि हमारे जो शब्द हैं वो संबंध बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: साथियों, धन्यवाद, माफ कीजिए, आप कैसे हैं, मैं आपकी मदद करूं, ये जो छोटे छोटे शब्द हैं वो रिश्तों में अपनापन पैदा करते हैं। इसके विपरीत ही अपमानजनक शब्द दिल को चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे शब्द सामने वाले के मन पर कैसा प्रभाव डालेंगे। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है श्रोताओं, हम सभी से कभी ना कभी कोई ना कोई गलती तो होती है। इसलिए जहाँ उचित हो वहाँ पुरानी गलतियों को छोड़कर आगे बढ़ने की भावना रखनी चाहिए। क्षमा का अर्थ गलत व्यवहार को सही मान लेना नहीं है, इसका अर्थ ये है कि हम अपने मन में नकारात्मकता को हमेशा के लिए जगह न दें और स्वस्थ तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करें।
1: जी हाँ जागृति जी। साथी दोस्तों, आज सोशल मीडिया ने तुलना को काफी हद तक बढ़ा दिया है।
0: बिल्कुल।
1: हम देखते हैं कि किसी दोस्त की जिंदगी में कितनी चीजें अच्छी चल रही हैं, कोई कितना सफल है, किसके कितने दोस्त हैं या किसी का परिवार कितना खुश दिखाई देता है, ये सभी हम देखने लगे हैं। लेकिन हमें ऐसे में याद रखना चाहिए कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली जिंदगी पूरी जिंदगी नहीं होती।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह दोस्तों, रिश्तों में भी तुलना नहीं करनी चाहिए कि जैसे देखो कि तुम्हारा भाई ऐसा करता है, देखो उसकी दोस्ती कितनी अच्छी है, देखो तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो। श्रोता साथियों, ऐसे जो वाक्य होते हैं वो रिश्तों में दूरी पैदा कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: आप याद रखिए कि हर व्यक्ति अलग है और हर रिश्ता अपनी जगह खास होता है। कभी कभी जागृति जी, रिश्तों में गलती हमारी भी होती है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अहंकार हमें सॉरी कहने से रोक देता है। हमें लगता है कि पहले सामने वाला माफी मांगे।
0: जी हाँ।
1: लेकिन दोस्तों, अगर रिश्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो सिर्फ ये साबित करने के लिए गलती किसकी थी रिश्ता खराब करना समझदारी नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: अगर गलती हुई है तो सच्चे मन से कहिए कि हाँ, मुझसे गलती हुई है।
0: जी हाँ।
1: और मुझे इसका अफसोस है। श्रोता साथियों, एक छोटी सी सच्ची माफी कई बार बड़ी दूरी को कम कर सकती है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि संबंध जीवन के वे रंग है जिनके बिना सफलता की तस्वीर अधूरी लगती है। हमारे पास कितनी संपत्ति है, कितनी बड़ी उपलब्धियां हैं या हमारा जीवन कितना सुविधापूर्ण है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हमारे सुख दुख में हमारे साथ कौन खड़ा है और हम दूसरों के लिए कितने संवेदनशील हैं।
1: बिल्कुल,
0: आज आवश्यकता इस बात की श्रोता साथियों कि हम रिश्तों को केवल निभाने की जिम्मेदारी न समझे बल्कि उन्हें प्रेम, विश्वास, सम्मान और सकारात्मक सोच से सींचे। मोबाइल की स्क्रीन से थोड़ा बाहर निकलकर अपनों की आंखों में देखें, उनकी बातों को सुने, उनके साथ समय बिताएं और उनकी भावनाओं को समझें। याद रखिए श्रोताओं, रिश्ते शब्दों से नहीं व्यवहार से सुंदर बनते हैं, विश्वास से मजबूत होते हैं और प्रेम से जीवित रहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए आप अपने मन से एक बात कहिए कि जहां नाराजगी है वहां संवाद आप जरूर करेंगे, जहां दूरी है वहां अपनापन बढ़ाएंगे, जहां गलतफहमी है वहां सच्चाई से बात करेंगे, जहां जरूरत होगी वहां सहयोग का साथ बढ़ाएंगे और जहां रिश्ता है वहां उसे सम्मान के साथ निभाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि एक सुंदर घर केवल दीवारों से नहीं बनता, सुंदर संबंधों से बनता है और एक मजबूत समाज केवल योजनाओं से नहीं बनता, एक दूसरे के प्रति विश्वास और सहयोग से बनता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में बातें हमारे युवा साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी हैं।
0: बिल्कुल,
1: और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा तो हम जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे युवाओं को यहाँ पर एक और गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए साथी सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत।

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें हुई वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज़, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, बेशी अनाज तकी ना तू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। बागड़ रेडियो एवं बागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सच्चा बचपन। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर, लेकर हाजिर हो चुकी हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे घर की उस थाली के बारे में जिसमें रंग जितने ज्यादा होंगे बच्चों के लिए पोषण की संभावनाएं भी उतनी बढ़ेंगी। बच्चों के भोजन में हम अक्सर यह सोचते हैं कि उन्हें क्या खिलाया जाए, कितना खिलाया जाए, कौन सी चीज उनके लिए विकास के लिए ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन इस पूरी चर्चा में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मौसम के अनुसार मिलने वाले फल और सब्जियों को लेकर। हमारे आसपास प्रकृति हर मौसम में हमें अलग अलग खाद्य पदार्थ देती है। खासकर स्थानीय स्तर पर मिलने वाले फल और सब्जियां परिवार के रोजमर्रा के भोजन में आसानी से शामिल किए जा सकते हैं। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम उनके महत्व को समझें और बच्चों की थाली में उन्हें सही तरीके से जगह दें। तो आज इस विषय पर हमारी आपसे ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं मौसम के अनुसार मिलने वाले फल और सब्जियों को लेकर। तो इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ विषय विशेषज्ञ मौजूद है, तो आइए सुनते हैं उन्हीं से इन महत्वपूर्ण बातों को, फिर आगे हम हमारी बातें जारी रखेंगे। सर नमस्कार।
1: नमस्ते
0: सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में। सर, जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम सच्चा बचपन से जुड़ रहे हैं और आज हमारी कार्यक्रम में आपसे ढेर सारी बातचीत रहने वाली है कि बच्चों का आहार, मौसमी फल किस तरीके से हम उनके खाने में शामिल कर सकते हैं, तो सबसे पहले सर आप कार्यक्रम में अपना परिचय हमें बताइए।
1: नमस्कार, मेरा नाम जलज उपाध्याय है, उद्यान विभाग बांसवाड़ा के अंदर मैं कार्यरत हूँ।
0: बिल्कुल,
1: सज्जनगढ़, कुशलगढ़, गांगड़ तले क्षेत्र मोस्टली हमारा एरिया है।
0: बिल्कुल, तो सर जैसा कि आपने आपका परिचय हमें बताया, तो यही सबसे पहले मैं कार्यक्रम में आपसे जानना चाहूंगी कि बच्चों के आहार में मौसमी फल और सब्जियों को शामिल करना क्यों जरूरी है।
1: देखिए, सब्जी और जो फल होते हैं जिसमें अधिकांश अपन बात करते हैं, अपन लोकल जो सब्जी यहाँ पर अवेलेबल होती है, तो वैसे अपन अपने बच्चों को ज्यादा न्यूट्रिशन मार्केट से खरीद के तो अपन दे नहीं पाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसमें जो अधिकांश चीजें जो बच्चों के पोषण के लिए जरूरी होती है वो अपन को लाइव मिलती है, जैसे कोई ऐसी सब्जी है, फल है, तो उसमें अपन को सबसे पहले यह देखना होता है कि यहाँ पे चूंकि जनजाति क्षेत्र है, लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती कि वो कुछ महंगी चीज खरीद के और अपना पोषण कर सके।
0: बिल्कुल,
1: तो अपन उनको एक सलाह ये देते हैं कि जो मार्केट के अंदर सीजन के अंदर जो सीजनल मिलता है उसमें होता क्या है कि सीजनल वेजिटेबल्स या सीजनल फ्रूट जो होता है वो आपको एक तो इजीली अवेलेबल हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: मार्केट में उस टाइम उसकी रेट कम होती है क्योंकि ऑफ सीजन वाले बाहर से आते हैं तो कॉस्टली पड़ते हैं।
0: बिल्कुल सर।
1: अब अपन बात करते हैं यहाँ के जैसे लोकल, अभी अपना जो खरीफ का जो सीजन चल रहा है अगस्त सेप्टेम्बर के अंदर जो चीज अपन को अवेलेबल होती है उसमें मोस्टली जो वेजिटेबल्स हैं जैसे कि आपका भिंडी है, बैंगन है, टमाटर है, उसके बाद में लीफी के अंदर अपन आ जाते हैं तो जैसे पालक अभी अवेलेबल हो जाती है अपने को यहाँ पर अधिकांश। तो अपन को पोषण के हिसाब से बच्चे को जैसे एक एवरेज माना जाए तो प्रतिदिन एक अगर स्वस्थ बच्चा है तो उसको कम से कम 200 से 300 ग्राम अकॉर्डिंग टू एज उसकी आवश्यकता होती है। तो उसमें भी अपन को ये होना चाहिए जैसे मिक्स वेज पे जाना चाहिए, जैसे 50 ग्राम के आसपास अपन उसको ट्यूबर जैसे जमीन से जो निकलने वाली जो होती है वो दी जाए।
0: बिल्कुल,
1: 50 ग्राम जो है वो लीफी दी जाए उसको और बाकी में जैसे जो मार्केट में अवेलेबल हो।
0: बिल्कुल, तो सर जैसा कि आपने हमें बताया कि किस तरीके से बच्चों के आहार में हमें मौसमी फल शामिल करने चाहिए, यही आपने हमें ये बताया कि सितंबर माह में हमारे बांसवाड़ा क्षेत्र के आसपास कौन कौन सी स्थानीय फसलें हैं जो हमें मिलती है जिन्हें हम हमारे भोजन के तौर पर शामिल कर सकते हैं। यही सर अब मैं जानना चाहूंगी कि क्या मौसमी फल और सब्जियां दूसरे समय मिलने वाले फलों और सब्जियों की तुलना में अधिक पौष्टिक होते हैं।
1: जी हाँ, सीजनल फल और जो फिर सीजनल सब्जी होती है उस टाइम पे उसमें जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होते हैं वो प्रचुर मात्रा में होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: अगर अपन ऑफ सीजन पे जाना चाहेंगे तो ऑफ सीजन में होता क्या है कि वो चीज हो जरूर जाती है लेकिन उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होनी चाहिए वो उस टाइम अपन को नहीं मिलती है क्योंकि वो ऑफ सीजन में तैयार होती है।
0: जी जी।
1: इसलिए अपन को जानना चाहिए मोस्टली जो सीजनल होते हैं, जैसे कि अभी के सीजन में है जैसे कि पालक, हालांकि पालक आजकल थ्रू आउट ईयर मिलती है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन पालक बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खिलानी चाहिए क्योंकि उसकी पूरी पत्ती के अंदर अपने आप में न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है।
0: जी बिल्कुल,
1: उसके अंदर अपन को आयरन प्रचुर मात्रा में जो कि बच्चों को बढ़वार के लिए बहुत जरूरी होता है, जो शरीर में हीमोग्लोबिन जो खून बनता है उसमें काम आता है। दूसरा, उसमें ऐसे मिनरल्स होते हैं जिससे उसकी आंखों की जैसे रोशनी वगैरह जैसे होती है वो सही होती है।
0: बिल्कुल,
1: दूसरा उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो शरीर के अंदर जितने भी अपने छोटे माइक्रो मिनरल्स होते हैं उसकी क्षतिपूर्ति उसी से हो जाती है।
0: जी बिल्कुल,
1: बच्चों में बढ़वार जब होती है तब उसके मसल्स डेवलपमेंट होता है तो अपने को फाइबरस जो होते हैं रेशे वाली जो सब्जियां या फल होते हैं वो देने चाहिए। उसमें जैसे आपका भिंडी है,
0: बिल्कुल
1: भिंडी बच्चों को जितना ज्यादा हो सके खिलाना चाहिए। उसके बाद में आपके जो दूसरे फल जैसे कि टमाटर वगैरह जो होते हैं उनमें क्या विटामिन सी वगैरह जैसे ज्यादा होता है। जनरली अपने यहाँ पर बच्चों में क्या है जैसे स्किन डिजीज ज्यादा होती है।
0: जी जी बिल्कुल,
1: तो आप उनको फल में और सब्जी में ऐसी चीजें दोगे जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, जैसे नींबू वर्गीय जितना भी अपने यहाँ पर अवेलेबल होता है।
0: बिल्कुल,
1: तो उसके अंदर उसको एक तो विटामिन सी मिल जाता है, केला है जैसे उसमें पोटेशियम वगैरह मिल जाता है बच्चे को, जमीकंद अपन जैसे यहाँ पर अपने आज मोस्टली इस सीजन में अभी गाजर मिल जाता है, मूली मिल जाती है,
0: बिल्कुल
1: शकरकंद मार्केट में शायद आने लग गया, चुकंदर 12 महीने मिलता है अपने यहाँ पर, तो अपन ऐसी चीजों का भी उसके भोजन में समावेश कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आप हमें ढेर सारी बातों से अवगत करवा रहे हैं कि हम कौन कौन से फल सब्जियां बच्चों के खाने में शामिल कर सकते हैं, यही सर हम देखते हैं कि अक्सर लोगों को लगता है कि जो फल महंगा होता है वही ज्यादा पौष्टिक है, क्या ये बात सही है?
1: नहीं, ऐसा नहीं है। महंगा फल क्या है कि एक बोलते हैं ना, एक अच्छा वो एक सिंबल बन गया है कि भाई हम ये चीज यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा वो नहीं होता है। अपन जैसे कहते हैं भाई लोगों को बादाम खिलाओ ये खिलाओ, आप उसको मूंगफली खिला के भी वो चीज दे सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और अभी जहां तक ट्रेंड्स आया है अभी पिछले कुछ सालों में अपने बांसवाड़ा जिले में मूंगफली होने लग गई है, जो कि पहले अपने यहाँ नहीं होती थी।
0: जी जी।
1: क्योंकि मोस्टली या तो गुजरात से मूंगफली आती थी या एमपी से आती थी।
0: बिल्कुल।
1: पर अब अपने यहाँ पर इस वागड़ क्षेत्र में भी मूंगफली लोग करने लग गए हैं।
0: बिल्कुल सर, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि महंगे फलों में ही पौष्टिकता हो, हमारे आसपास स्थानीय कई सारे ऐसे फल सब्जियां मौजूद हैं जिनमें भी पोषण है। यही सर, फल और सब्जियों को धोने से पहले उनका सही तरीका जानना जरूरी है, क्या गलत तरीके से धोने और काटने से पोषक तत्व प्रभावित हो सकते हैं?
1: देखो, धोने पर तो क्या है कि कोई भी फल हो, चाहे वो लोकल हो या बाहर से मंगाया हुआ, उसको धोना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि प्रोडक्शन स्टेज पे भी आजकल क्या है कि लोग इंसेक्टिसाइड का उपयोग करने लगे हैं, जिसमें बहुत से इंसेक्टिसाइड ऐसे होते हैं जो कॉन्टेक्ट होते हैं, यानी कि स्प्रे करने के बाद में वो उसके ऊपर उसके अंश रह जाते हैं, तो ला के साफ पानी से 2 या 3 बार धो देना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: ताकि उसपे जो इंसेक्टिसाइड है, जो पाउडर है या हार्मफुल केमिकल है, वो उसमें साफ हो जाए।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा, काटने का जो तरीका है इसका, वो कोई इतना वक्त है, वो बहुत कम ऐसे फ्रूट्स होते हैं जैसे कि एप्पल है। एप्पल को अपन जैसे वर्टिकल हमेशा काट के यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल कोई नहीं काटता उसको।
0: बिल्कुल।
1: तो वो क्या है कि उसमें प्रचुर मात्रा में आयरन वगैरह होने की वजह से अगर आपने उसको गलत तरीके से काट के रख दिया तो वो एकदम उसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लैक इन कलर में आ जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: जो खाने में ऑड लगता है थोड़ा सा। आपका जैसे पाइनएप्पल है, अगर आपने उसके सही तरीके से नहीं काटा तो उसके अंदर क्या है कि छोटे छोटे उसके अंदर कांटे होते हैं, वो गले में अटकने का जैसे डर होता है, तो उसको सही तरीके से काटोगे तो एक लाइन में उसके कांटे निकल जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जिनको अपन को सही तरीके से काट के ही यूज करना चाहिए।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि धोना तो फलों को बहुत जरूरी है, बस काटने की जो चीजें हैं वो हमें ध्यान रखने की जरूरत है। यही सर, स्थानीय किसानों से मौसमी फल और सब्जियां खरीदने से परिवार किसानों दोनों को क्या लाभ हो सकता है?
1: देखिए, स्थानीय खरीदने पर एक तो आपको क्या है कि स्थानीय फल और सब्जी सस्ता मिलेगा, इजीली अवेलेबल हो जाता है अपने यहाँ पर।
0: बिल्कुल।
1: और आम किसान या जैसे अपने यहाँ पर देखिए गरीब परिवार लोग हैं जिनकी परचेज पावर बहुत कम होती है, तो स्थानीय उनको अगर मिल जाएगा तो उनके लिए होता है कि भाई उनकी जो पारिवारिक जो उनकी आय है उसमें कुछ पैसा उनका बचत होता है।
0: बिल्कुल।
1: बाहर से अगर अपन कोई ऐसी सब्जी मंगा रहे हैं जो कॉस्टली पड़ रही है, तो वो उसकी एक जो क्वांटिटी उनको चाहिए खाने के लिए, वो पूरी क्वांटिटी वो लोग खा नहीं पाते हैं। अभी अपना जैसे एक लोकल यहाँ का आता है किकोड़ा करके, जो इस सीजन में मोस्टली पाया जाता है और जंगलों में ही होता है, तो आज स्थिति ये हो गई है कि वो लोग किकोड़ा लाते तो हैं पर खुद के खाने के बजाय वो मार्केट में सेल करते।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आप हमें बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, यही सर, फल और सब्जियों को बच्चों के आहार में शामिल करते समय माता पिता अक्सर कौन सी गलती कर देते हैं जिससे उन्हें बचना चाहिए?
1: देखिए, माता पिता तो गलती क्या है कि आजकल अपने यहाँ सब बच्चों के लिए अलग अलग सब्जी तो बनती नहीं है, तो जनरली होता क्या है कि जो परिवार के लिए बनती है वो उनको खाना होता है। तो इसके लिए जैसे मैंने पूर्व में भी बताया कि अपन को मिक्स वेज की तरफ जाना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: कि अपन जो जैसे मूंग की जैसे दाल बनाई तो दाल से अपन को जैसे प्रोटीन मिल रहा है तो उसके अंदर अपन ने पालक डाल दी।
0: बिल्कुल।
1: तो उनको वो न्यूट्रिएंट्स जो उसके अंदर हैं वो उसको मिल जाएंगे। वेजिटेबल्स जो अपन बनाते हैं वो मिक्स में बनाएं, जैसे कि अपन आलू है, गोभी है, बैंगन है, टमाटर है, उसकी जो मिक्स सब्जी बनती है तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स एक साथ उनको मिलते हैं।
0: बिल्कुल।
1: एक जैसी सब्जी बनाने से बजाय मिक्स वेजिटेबल पे अपन को ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
0: बिल्कुल सर, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि बच्चों को पूरा फल देना बेहतर है या जूस? जूस और पूरे फल में क्या अंतर होता है?
1: देखिए, जूस और फल दोनों अपने आप में पूर्णतया ही होते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनका जो गुदा होता है अपन जैसे जूस निकालने के ऊपर क्या होता है, सिर्फ उसका जूस निकलता है, उसका गुदा अलग हो जाता है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसका गुदा भी अपने लिए फायदेमंद होता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जूस निकालने पर क्या होता है कि वो गुदा उससे अलग हो जाता है और उसके अंदर जो बेनिफिट एलिमेंट्स वगैरह होते हैं वो अपन को मिल नहीं पाते हैं। लेकिन जनरली जूस ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जैसे पूरा फल खा नहीं सकता, छोटा बच्चा या जैसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं कई बार जो नहीं खा पाते हैं, दांत वो नहीं कर पाते हैं, उनको अपन जूस के रूप में देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जूस तुरंत असर करता है बॉडी पे, और अगर साबुत फल खाया जाए तो वो कुछ समय पश्चात देता है।
0: बिल्कुल।
1: पर समय अपन को पूरा फल ही देना चाहिए।
0: बिल्कुल सर। तो जैसा कि आपने कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों को बहुत अच्छी बातों से अवगत करवाया है, तो अंत में आप कार्यक्रम के माध्यम से हमारे माता पिता और श्रोता साथी जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे मौसमी फल और सब्जियों को लेकर?
1: मौसमी फल और सब्जी के बारे में है, अपने यहाँ पर जो अधिकांश जो लोग हैं जिनके पास में छोटी बहुत खेती है, जोत होती है, उनको सलाह दी जाती है कि वो अपने यहाँ पर एक तो छोटी मात्रा में किचन गार्डन अपने स्वयं के यहाँ तैयार करें, ताकि उन्हें रोजमर्रा के काम में आने वाली जो मौसमी सब्जियां हैं, अपने यहाँ पर जो फल पाया जाता है जैसे नींबू वर्गीय है तो नींबू लगाना चाहिए, अमरूद लगाना चाहिए, आम लगाने चाहिए। तो ये लगाने से क्या होता है कि इनको मार्केट से खरीदना नहीं होता है। पपाया है, केला है, ये अपने यहाँ पर पौधे लगा लें, ताकि कम कीमत पे इनको ये चीज उपलब्ध हो जाती है और इनको मार्केट से खरीदना नहीं होता है।
0: बिल्कुल।
1: और घर में पैदा हुई चीज है तो बच्चे क्या खा भी लेते हैं उसको।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि हर किसी मार्केट से खरीद के खाना हर किसी के बस की बात नहीं होता है, इसलिए उन्हें किचन गार्डन या अपने घरों में छतों पे जहाँ पर भी इनको मिले ये अपने घर पे लगाना चाहिए अपने को।
0: बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों को कई सारी

नहीं, सही जानकारी और भोजन में विविधता ज्यादा मायने रखती है। तो जैसा कि बातें ढेर सारी हो गई हैं हमारी आपसे, अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेषर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: અંજલિ બોન, ગીત તો આશો પૂરું અને ગીતની બાદ એક વખત ફેરી આપણે કિસાન ભાઈ બહેનોનું આપણે સ્વાગત કરા હા આપણે આજને કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં ને જેમ કે ગીતે કે પહેલા આપણે વિશે બતાડ્યું હતું કે જાણંગ આ પુવાડી ને બહાર અમે કે આ પુવાડી હું કહેવાય ને આ આપણે પહેલા ઔષધિના રૂપમાં હું કામ કરી શકે
1: હવે તો જાગૃતિ પણ અણા વિષય માટે વાતચીત કરવા બદલે આપણે કાર્યક્રમ થકી જોડી રહે મનીષ સર તો સપ્તાહ કે પહેલા આપણે હામરી લડાની વાત ને મોરેકર આપણી વાતે
0: હવે
1: સર નમસ્કાર
2: અંજલિ જી નમસ્કાર
1: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં
2: જી ધન્યવાદ
1: सर जैसा कि आप हमारे कार्यक्रम से निरंतर जुड़ते रहते हैं और कार्यक्रम में खेतीबाड़ी से जुड़ी विशेष जानकारी आप हमारे किसान भाई बहनों को देते हैं तो सर आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है पुवाड़िया औषधि का महत्व और उसके लाभ को लेकर तो सर सबसे पहले हम कार्यक्रम में आपसे यही जानने वाले हैं कि पुवाड़िया आखिरकार है क्या
2: जी अंजलि जी ये बहुत जरूरी प्रश्न आपने पूछा है कि पुवाड़िया क्या होता है
1: जी जी
2: तो अगर देखा जाए तो पुवाड़िया हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से उगने वाला एक पौधा है जो हमें कहीं भी उगा हुआ दिखाई देता है
1: जी जी
2: सामान्य रूप से यदि इसकी पहचान की बात करें तो ये मेथी के पौधे के जैसा दिखाई देता है
1: जी
2: पर
1: जी।
2: इसकी जो पत्तियों का आकार है इसके फलियों का आकार है या इसके पौधे का जो आकार है तो सभी उस मेथी के मुकाबले में दो गुना से तीन गुना तक हो सकता है
1: जी जी
2: और होता ये झाड़ीनुमा पौधा ही है ये हमारे यहाँ तो बहुतायत में पाया ही जाता है
1: जी जी
2: और मूल रूप से ये हमारे यहाँ का ही पौधा है इसके जो उपयोग हैं उसमें इसकी फूल इसकी पत्ती इसके बीज इसका तना ये सभी कहीं ना कहीं जो है हमारे काम में आते हैं
1: जी बिल्कुल सर आपने सही कहा जैसा कि हम आपके माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से ये जान पाए कि पुवाड़िया जो है वो क्या होता है सर यही अब हम इसके औषधीय गुणों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि अगर ये हमें कहीं भी दिखाई देता है तो हम ये सोच लेते हैं कि ये तो एक जंगली पौधा है और हम उसे काट कर फेंक देते हैं लेकिन हम जैसा कि आपके माध्यम से जान पा रहे हैं तो इसके औषधीय गुण क्या क्या हो सकते हैं
2: हम इसके औषधीय गुणों की बात यदि करें तो सबसे पहली चीज है कि हम में इसकी उपलब्धता कब होगी
1: जी जी
2: तो इसकी उपलब्धता जो होती है वो बारिश के शुरू होते ही इसके पौधे उगना शुरू हो जाते हैं और इनका जो पुष्पकाल है वो जुलाई से सितंबर तक होता है
1: जी जी
2: और इनका जो फल इस पे लगते हैं यानी कि फलियां लगती हैं इस पे वो अगस्त से नवंबर तक उसमें लगती है
1: जी जी
2: तो तब तक ये पौधा हमको हमारे आसपास आसानी से मिल
1: जाता है जी बिल्कुल
2: कई जगह पे इसको कुछ अलग नामों से भी जाना जाता है हमारे यहाँ वागड़ में इसको पुवाड़िया बोलते हैं
1: जी जी
2: इसको चकवड़ भी बोलते हैं इसको चकमर्द भी बोलते हैं कहीं पवाड़ बोलते हैं और अंग्रेजी में यदि आप इंटरनेट पे अगर सर्च करना चाहें तो एशिया टोरा नाम से आसानी से इसको सर्च किया जा सकता है और इसके बारे में जाना जा सकता है
1: जी बिल्कुल
2: अब अगर हम इसके औषधीय गुणों की बात करें तो इसके जो औषधीय गुण हैं वो किन किन बीमारियों पे काम में आते हैं
1: जी जी
2: तो ये हृदय के लिए भी अच्छा होता है पित्त और वात इनमें भी ये फायदेमंद होता है कफ के रोगों में भी ये फायदेमंद होता है
1: जी जी
2: श्वास से संबंधित जो रोग होते हैं उनमें भी ये फायदेमंद होता है
1: जी बिल्कुल
2: दांत खाज खुजली जिसको बोलते हैं चमड़ी के रोग उनमें भी ये काम आता है
1: जी हाँ
2: और कई सारे जानकार लोग विशेष तरीके से जब इसका प्रयोग करते हैं हमारे जो गुणीजन हैं तो जहर उतारने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है
1: जी बिल्कुल
2: और सामान्य रूप से अगर इसके पत्तों की भाजी बना के खाई जाए तो ये कृमि को भी नष्ट करती है और इसे पशुओं को भी दिया जा सकता है
1: जी बिल्कुल सर जैसा कि आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारे किसान भाई बहनों को पुवाड़िया के औषधीय गुण बताए हैं और हम सभी जान पाए कि ये बहुत ही फायदेमंद होता है तो सर अब यही हम जानना चाहेंगे कि ये जो औषधीय गुणों से भरपूर पुवाड़िया जो है वो किन किन बीमारियों से हमें फायदा पहुंचाता है
2: एक तो प्रमुख रूप से इसका जो जिस बीमारी में ज्यादा उपयोग किया जाता है वो माइग्रेन या आधा सिर दर्द जिसको बोलते हैं
1: जी जी
2: उसमें इसका प्रयोग किया जाता है उसमें इसके बीजों को पीस के पानी के साथ
1: जी जी
2: सिर पे लगा के रखने से इसमें काफी आराम मिलता है और यदि लंबे समय तक गुणीजनों के परामर्श अनुसार इसका उपयोग किया जाए तो ये माना जाता है कि आधा सर दर्द हमेशा के लिए ये खत्म कर देता है
1: जी बिल्कुल
2: इसी तरह से अगर दूसरी हम बात करें तो सामान्य रूप से जो कमर का दर्द होता है जो ज्यादातर महिलाओं में ज्यादा होता है
1: जी बिल्कुल,
2: कुछ विशेष कारणों से, उसमें भी इसके बीजों का जो पाउडर है या चूर्ण है उसको गुड़ के साथ लिया जाता है
1: जी जी।
2: और मैं हर बार भी बोलूं तो गुड़ और घी के साथ इसको लिया जाता है, पर इसकी जो भी मात्रा हमको लेना है वो हमारे स्थानीय गुणीजन से हमको पूछ के लेना है
1: जी जी।
2: कि कितनी मात्रा का सेवन करना है और कितने समय तक सेवन करना है
1: जी बिल्कुल सर।
2: इसी तरह हम अगर दांत खात खुजली यानी कि चर्म रोग की बात करें तो उसमें भी ये काम आता है
1: जी बिल्कुल।
2: इसमें हम अगर उपलब्ध हो तो पुवाड़िया के पत्ते लेते हैं, उनको उबालते हैं
1: जी जी।
2: और इसका जो पानी होता है उसको हम उस स्थान को धोएं तो धीरे धीरे करके वो जो चर्म रोग है
1: जी
2: वो
1: जी।
2: पूरी तरह से ठीक हो जाता है
1: जी बिल्कुल सर।
2: सूजन को कम करने में भी ये इसी तरह से काम आता है, इसी तरह से इसका काढ़ा बना के सूजन वाले स्थान पर किसी पट्टी के कपड़े के साथ बांध के अगर लगा लिया जाए तो ये काफी लाभकारी होता है
1: जी बिल्कुल।
2: जिस तरह से हमने बात की कि इसको गुड़ और घी के साथ इसके बीजों के पाउडर को लिया जाता है तो ये खून को भी साफ करता है
1: जी बिल्कुल।
2: तो कई सारे त्वचा के रोग ऐसे भी होते हैं जिनमें शायद खून में किसी तरह की तकलीफ होने के कारण होते हैं तो वो इससे ठीक हो जाते हैं
1: जी जी।
2: इसमें एक ध्यान देने वाली बात हमेशा ये होती है कि पवाड़ बच्चों के लिए जो है हानिकारक हो सकता है
1: जी जी।
2: तो ऐसे में बच्चों को जब यदि आप इसको किसी समस्या के चलते देना चाहते हैं तो गुणीजन की सलाह अनुसार दें और इसकी जो पत्तियों की भाजी है वो बच्चों को कम मात्रा में खिलाएं
1: जी जी।
2: क्योंकि एक तो इसमें अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है
1: जी जी बिल्कुल।
2: तो मोटे मोटे ये इसके सामान्य औषधि उपयोग हैं जिनको हम अपने स्थानीय स्तर पे उपलब्ध होने पे इसका उपयोग करके इस तरह की बीमारियों में काफी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और क्योंकि ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक तरीके से उगता है तो इसके लाभ काफी ज्यादा हैं। और इसी के साथ साथ यदि इसके पत्तियों का हम भाजी बना के खाते हैं तो विशेष रूप से ये उन क्षेत्रों के लिए तो वरदान से कम नहीं है जिन क्षेत्रों के पानी में फ्लोराइड की समस्या होती है और जिसकी वजह से हड्डियों में टेढ़ा पना जाता है या वो धनुषाकार हो जाती है, ये समस्या बच्चों में आती है। तो उस स्थिति में यदि नियमित अंतराल से इसकी भाजी का सेवन किया जाए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है और फ्लोराइड का पानी हमारी हड्डियों के कैल्शियम को कम करने लगता है, तो उसमें ये बहुत लाभप्रद होती है। इसके साथ यदि हम चाहें तो इसकी पत्तियों को सुखा के भी रख सकते हैं
1: जी जी।
2: और हम जो दाल सब्जी हमारे घर में बना रहे हैं या चटनी, तो उसमें सूखी हुई 5-10 पत्तियां डाल के यदि इसका नियमित परिवार में उपयोग करें
1: जी जी।
2: तो परिवार के कैल्शियम की आवश्यकता को ये पूर्ण करता है और भविष्य में होने वाले जोड़ों के दर्द में ये सुरक्षा प्रदान करता है
1: जी बिल्कुल। जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आपने कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से ये बताया कि पुवाड़िया औषधि का क्या महत्व है, क्या लाभ है और किन किन बीमारियों में इसके फायदे होते हैं, साथ ही सर आपने ये भी बताया कि इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो सर यही अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: तो अंत में मैं यही बोलना चाहूंगा कि जैसा हमने जाना कि पुवाड़िया सेहत के लिए कई तरह से बहुउपयोगी पौधा है जो कई तरह की औषधीय गुणों को अपने अंदर रखता है और इसके प्रत्येक चीज अलग अलग बीमारियों पे हमको काम आती है और ये प्राकृतिक औषधि है
1: जी जी।
2: लेकिन हमेशा इसमें एक चीज ध्यान रखने की ये होती है कि एक तो हम गुणीजन की सलाह अनुसार ही इसका सेवन करें
1: जी जी।
2: और दूसरा इसमें बहुत ज्यादा गुण है, सोच के इसके सेवन की अधिकता जो है वो नुकसान दे सकती है
1: जी बिल्कुल।
2: तो सेवन को भी संयमित और नियमित रखें
1: जी बिल्कुल सर, आपने बहुत सही कहा। तो जैसा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से ये बताया कि जब हम किसी औषधीय गुणों से भरपूर किसी चीज को अपने जीवन में शामिल करते हैं तब हमें उसका उपयोग करते समय बहुत सारी बातों को ध्यान रखना है। हमें उससे के लाभों को जानकर उसका हद से ज्यादा सेवन नहीं करना है, नहीं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो सर जैसा कि कार्यक्रम में बहुत अच्छी

0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
2: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
1: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
2: होवे भाई बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े में देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
1: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
2: होवे एनीमिया तकी बचा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
1: होवे आ सब सावधानी रखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई ने बोलो, घर के निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, ने सोरा ने मुस्कान।
1: होवे इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हेती जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोलो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ की छाव में आपड़े रह हूं, या आपड़े ने कितनी शांति मिले है। जैया हवा में आपड़े हाल रह हूं, ये भी आपड़ा थकी कई आश रागे है। हो भी अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ूंगा, पानी ने बचा लूंगा, मैं अपने धरती ने जीवन दान आलूंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना कदम है, ये अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपनी साथी अंजलि पारस।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है स्वस्थ समाज के लिए सुरक्षित और जागरूक स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं अंजलि कि किसी भी समाज की असली ताकत उसकी ऊंची इमारतों, बड़ी सड़कों या आर्थिक संपन्नता से नहीं, बल्कि उसके स्वस्थ नागरिकों से पहचानी जाती है। जिस समाज का व्यक्ति स्वस्थ है वो परिवार को मजबूत बनाता है, अपने काम को बेहतर ढंग से करता है और गांव तथा देश के विकास में अपना योगदान देता है। इसीलिए स्वास्थ्य केवल बीमारी से बचने का नाम नहीं है, बल्कि स्वस्थ शरीर, शांत मन, स्वच्छ वातावरण और जागरूक जीवन शैली का संतुलन है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है स्वस्थ समाज के लिए सुरक्षित और जागरूक स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि किस तरीके से जिस समाज का व्यक्ति अगर स्वस्थ रहता है तो वह परिवार और समाज को मजबूत बनाता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि श्रोता साथियों, हम अक्सर बीमारी होने के बाद इलाज के बारे में सोचते हैं, जबकि स्वास्थ्य की सही व्यवस्था वह है जिसमें बीमारी आने से पहले ही उससे बचाव की तैयारी हो।
0: जी हाँ,
1: सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ भोजन, साफ सफाई, टीकाकरण, समय पर स्वास्थ्य जांच, सही जानकारी और नजदीक उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं, ये सभी एक सुरक्षित स्वास्थ्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण आधार है।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, आज आवश्यकता केवल अस्पतालों की संख्या बढ़ाने की नहीं बल्कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने की है। जब परिवार स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है, समुदाय मिलकर स्वच्छता और पोषण पर ध्यान देता है और स्वास्थ्य सेवाएं समय पर और सुरक्षित रूप से उपलब्ध होती हैं, तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण संभव होता है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि स्वास्थ्य का अर्थ केवल ये नहीं है कि व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति वो है जो शारीरिक रूप से सक्षम है, मानसिक रूप से संतुलित है और सामाजिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग ले सके।
1: बिल्कुल,
0: कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति बाहर से स्वस्थ तो दिखाई देता है लेकिन वो लगातार तनाव, चिंता, नींद की कमी या गलत खानपान जैसी समस्याओं से गुजर रहा होता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए स्वास्थ्य को व्यापक दृष्टि से समझना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बचपन से ही शुरू होनी चाहिए। श्रोताओं, बच्चों को हाथ धोने के बारे में बताना, स्वच्छ भोजन करने के बारे में बताना, पर्याप्त पानी पीने के बारे में बताना, साफ वातावरण रखने और अपनी परेशानी परिवार या शिक्षक को बताने की आदत सिखाई जानी चाहिए।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही बात करें सुरक्षित स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों जरूरी है, तो श्रोता साथियों, स्वास्थ्य व्यवस्था तभी सुरक्षित मानी जाएगी जब जरूरत पड़ने पर व्यक्ति को सही जानकारी, सही सलाह और उचित स्वास्थ्य सेवा समय पर मिल सके।
0: जी हाँ,
1: गाँव और दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच कई बार चुनौतीपूर्ण होती है। ऐसे में श्रोता साथियों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा सहयोगी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
0: जी हाँ,
1: स्वास्थ्य व्यवस्था का उद्देश्य श्रोता साथियों केवल गंभीर बीमारी का इलाज करना नहीं होता बल्कि लोगों को बीमारी से बचाने के लिए पहले से जागरूक करना भी होता है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बात है इलाज से बेहतर बचाव। अगर हम साफ पानी पिएंगे, भोजन को ढककर रखेंगे, हाथों को साबुन से धोएंगे, आसपास पानी जमा न होने देंगे और स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो कई संक्रामक बीमारियों से बचाव किया जा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: इसी तरह श्रोता साथियों, नियमित स्वास्थ्य जांच से कई समस्याओं का समय रहते पता लगाया जा सकता है। बीमारी को शुरुआती अवस्था में पहचानना उपचार को आसान बना सकता है। इसीलिए स्वास्थ्य व्यवस्था का पहला कदम लोगों को रोकथाम के बारे में जागरूक करना होना चाहिए।
1: जी हाँ जागृति जी, यही बात करें स्वच्छता और स्वास्थ्य के गहरे रिश्ते की, तो श्रोता साथियों, जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ स्वास्थ्य की सुरक्षा मजबूत होती है।
0: जी हाँ,
1: घर, स्कूल, आंगन, खेत और सार्वजनिक स्थानों की सफाई केवल सुंदरता के लिए नहीं बल्कि बीमारी से बचाव के लिए भी जरूरी है। कचरे का सही निस्तारण, शौचालय का उपयोग, साफ पानी की व्यवस्था और मच्छरों के प्रजनन स्थलों को रोकना सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल,
1: एक व्यक्ति अपने घर को साफ रखकर शुरुआत कर सकता है लेकिन जब पूरा गांव मिलकर स्वच्छता अपनाता है तब उसका प्रभाव कहीं अधिक बड़ा होता है।
0: जी हाँ अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं स्वस्थ समाज के लिए सुरक्षित और जागरूक स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, तो ये बातें निरंतर आगे यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें पोषण है स्वास्थ्य की नींव को लेकर। तो श्रोता साथियों, स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार जरूरी होता है। भोजन में अनाज, दालें, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध और उसके विकल्प, स्थानीय उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल किए जा सकते हैं। बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए पोषण का विशेष महत्व होता है।
1: बिल्कुल,
0: कुपोषण केवल शरीर को कमजोर नहीं करता जागृति जी, बल्कि बच्चों के विकास और सीखने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए परिवारों को भोजन की मात्रा के साथ उसकी गुणवत्ता और विविधता पर भी ध्यान देना चाहिए।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे देश का भविष्य है और उनके स्वस्थ विकास के लिए पौष्टिक भोजन, स्वच्छता, टीकाकरण, पर्याप्त नींद, शारीरिक गतिविधि और समय पर स्वास्थ्य जांच बहुत जरूरी होती है। हम देखते हैं कि स्कूलों में स्वास्थ्य और स्वच्छता की जानकारी को व्यवहार से जोड़ा जाता है। केवल किताब में पढ़ना पर्याप्त नहीं है श्रोताओं, बच्चों को हाथ धोने के लिए, साफ पानी पीने के लिए और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने का अभ्यास भी कराया जाना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: अगर अंजलि बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, कमजोरी महसूस कर रहा है या उसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, तो हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि परिवार वालों को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
0: जी हाँ,
1: परिवार के स्वास्थ्य में महिलाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन अक्सर महिलाएं अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को प्राथमिकता नहीं देती है। महिलाओं को नियमित स्वास्थ्य जांच करवानी होगी, पोषण का ध्यान रखना होगा, स्वच्छता और अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में सही जानकारी मिलना भी बहुत जरूरी है। श्रोताओ, महिला का स्वास्थ्य केवल उसका व्यक्तिगत विषय नहीं होना चाहिए। स्वस्थ महिला परिवार और समुदाय को मजबूत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है।
0: जी हाँ जागृति जी, यही बात करें बुजुर्गों के लिए संवेदनशील स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो श्रोता साथियों, बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ परिवार के सहयोग पर सम्मान की भी आवश्यकता होती है।
1: जी हाँ,
0: उम्र बढ़ने के साथ नियमित जांच, दवाओं के सही उपयोग, संतुलित भोजन और सुरक्षित दैनिक जीवन पर ध्यान देना जरूरी है। परिवार के सदस्यों को बुजुर्गों की बात जो है वो ध्यान से सुननी चाहिए और उसकी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बुजुर्गों की देखभाल केवल जिम्मेदारी नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि परिवार के संस्कारों की पहचान भी है।
1: बिल्कुल,
0: आज हमारे हाथों में मोबाइल है, इंटरनेट पर स्वास्थ्य से जुड़ी हजारों जानकारियां उपलब्ध हैं, लेकिन हर जानकारी सही हो यह जरूरी नहीं है। बिना जांचे किसी भी स्वास्थ्य संदेश पर विश्वास करना या किसी की सलाह पर दवा लेना नुकसानदायक हो सकता है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए स्वास्थ्य संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय के लिए योग्य स्वास्थ्य कर्मी या चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। जागरूक व्यक्ति वही है जागृति जी, जो जानकारी प्राप्त करता है लेकिन उसे समझदारी से परख कर ही अपनाता है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आपने स्वास्थ्य जानकारी में जागरूकता किस तरह से जरूरी है इसको लेकर हमारे श्रोता साथियों को बताया, तो यही हम जानते हैं कि दवाओं का सुरक्षित उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं। जैसा कि स्वास्थ्य व्यवस्था की सुरक्षा में दवाओं का सही उपयोग भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर हो या स्वास्थ्य कर्मी द्वारा बताई गई दवा का उपयोग निर्देश के अनुसार किया जाना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: दूसरे व्यक्ति की दवा अपने आप लेना या बीमारी के लक्षण देखकर स्वयं उपचार शुरू कर देना उचित नहीं है श्रोताओं। दवाओं को बच्चों की पहुंच से दूर रखना और उनकी उपयोग संबंधी जानकारी को समझना भी जरूरी है। स्वास्थ्य में छोटी सी लापरवाही श्रोताओं कभी कभी बड़ी समस्या बन सकती है।
0: जी हाँ जागृति जी, यही अब बात आती है मानसिक स्वास्थ्य को भी समझना होगा।
1: जी हाँ
0: श्रोता साथियों, स्वास्थ्य की चर्चा में मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तनाव, चिंता, लगातार उदासी, नींद में बदलाव या मन पर बढ़ता दबाव भी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकता है। ऐसे समय में व्यक्ति को अकेला छोड़ने के बजाय परिवार और भरोसेमंद लोगों से बात करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
1: जी हाँ,
0: जरूरत होने पर योग्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि श्रोता साथियों, एक जागरूक समाज वही होता है जहाँ व्यक्ति अपनी मानसिक परेशानियों के बारे में बिना डर और शर्म के सहायता मांग सके। स्वास्थ्य केवल अस्पताल की जिम्मेदारी नहीं है, स्वस्थ समाज बनाने में समुदाय की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।
1: बिल्कुल,
0: गांव में स्वास्थ्य संबंधित बैठकें, स्वच्छता अभियान, पोषण जागरूकता, स्वास्थ्य शिविरों और जन जागरूकता कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। यदि किसी गांव में पानी की समस्या है, कचरा जमा होता है या किसी बीमारी का खतरा बढ़ रहा है, तो समुदाय को मिलकर संबंधित विभाग तक बात पहुंचानी चाहिए। यही सामुदायिक भागीदारी जागृति जी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाती है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था तभी प्रभावी होगी जब लोगों का स्वास्थ्य सेवाओं पर विश्वास हो। इसके लिए स्वास्थ्य केंद्रों में साफ सफाई, उचित व्यवहार, आवश्यक जानकारी और समय पर सेवा उपलब्ध होना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: दूसरी ओर नागरिकों को भी स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सहयोग करना चाहिए। और स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारी साझा करनी चाहिए। विश्वास और सहयोग से ही स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होती है। साथ ही सामुदायिक रेडियो की क्या भूमिका हो सकती है इसको लेकर हमारे श्रोता साथियों का अंजलि हम बताएं तो स्वास्थ्य जागरूकता को गांव-गांव तक पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है और बन भी रहा है। रेडियो स्थानीय भाषा और स्थानीय संदर्भ में स्वास्थ्य संबंधी उपयोगी जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसा कि अंजलि हम हमारे वागर रेडियो के माध्यम से स्वच्छता को लेकर, पोषण को लेकर, टीकाकरण, मौसमी बीमारियों, बचाव, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: श्रोता अपनी समस्या और अनुभव साझा भी कर सकते हैं जिससे स्वास्थ्य संबंधी संवाद दो तरफा बनता है। इस तरह श्रोता साथियों हम कह सकते हैं कि सामुदायिक रेडियो केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं है बल्कि स्वास्थ्य जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता का मजबूत मंच बन सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि आज तकनीक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच को आसान बनाने में मदद कर रही है।
1: बिल्कुल,
0: मोबाइल के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है और कई सेवाओं के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन तकनीक का उपयोग करते समय सावधानी जरूरी है। इंटरनेट पर उपलब्ध हर

0: एहतजाज और सामुदायिक भागीदारी, इन सभी का साथ बहुत जरूरी है।
1: जी जी,
0: हमें स्वास्थ्य को बीमारी के बाद शुरू होने वाली प्रक्रिया नहीं बल्कि रोजमर्रा की जीवन शैली का हिस्सा बनाना होगा। परिवार अपने स्तर पर जागरूक हो, स्कूल बच्चों में स्वास्थ्य की अच्छी आदतें विकसित करें, गांव सामूहिक रूप से स्वच्छता और पोषण पर काम करें और स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक समय पर पहुंचे, तभी स्वस्थ समाज का सपना साकार होगा। याद रखिए श्रोता साथियों, स्वास्थ्य किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे समाज की साझी जिम्मेदारी है। जब एक परिवार जागरूक होता है अंजलि, तो एक घर सुरक्षित होता है।
1: बिल्कुल,
0: जब पूरा गांव जागरूक होता है तो पूरा समुदाय सुरक्षित होता है, और जब पूरा समाज स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता बना लेता है तब एक मजबूत और स्वस्थ राष्ट्र की नींव तैयार होती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि बीमारी का इंतजार करने के बजाय स्वास्थ्य की तैयारी करनी चाहिए। जानकारी को जागरूकता बनाए, जागरूकता को अच्छे व्यवहार में बदले और अच्छे व्यवहार को पूरे समाज की ताकत बनाए। स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ समाज, मजबूत राष्ट्र, यही हमारे सबकी कामना रहेगी।
0: जी हाँ, इसी उम्मीदों के साथ आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारश्चर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का

0: अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं।
1: जी जी।
0: यही अगर बात करें कि शरीर को पोषण देने में किस प्रकार ये सहायक होते हैं इसकी, तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि हमारे शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए कई पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है।
1: जी हाँ।
0: फल और सब्जियों को इन पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत माना जाता है। उदाहरण के लिए श्रोता साथियों, हरे पत्तेदार सब्जियां कई विटामिन और खनिज से भरपूर होती हैं। खट्टे फल जैसे कि श्रोता साथियों संतरा और विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। केला श्रोता साथियों पोटेशियम का अच्छा स्रोत होता है और अमरूद में फाइबर और विटामिन सी का अच्छा स्रोत पाया जाता है। इसलिए श्रोता साथियों हमें अपने भोजन में विविधता को शामिल करना है।
1: बिल्कुल मनीषा, तो जैसा कि कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि फल और सब्जियों का क्या महत्व है और जैसा कि आपने फल के बारे में बताया, यही बात करें कि बच्चों के लिए फल और सब्जियां क्यों जरूरी है। तो श्रोता साथियों, बच्चों का शरीर लगातार बढ़ता है और विकसित होता रहता है, इसलिए उनके भोजन में विविधता और पोषण होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे केवल रोटी चावल या पैकेट वाले स्नैक्स खाते रहे, फल और सब्जियों से दूरी बनाए, तो उनका भोजन संतुलित नहीं रह पाएगा। माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को शुरू से ही अलग अलग प्रकार की सब्जियां और फल खाने की आदत डालें। लेकिन अक्सर एक समस्या सामने आती है, बच्चे हरी सब्जियां खाना पसंद नहीं करते। ऐसे में उन्हें डांटने या जबरदस्ती करने के बजाय भोजन को रोचक बनाया जा सकता है, जैसे कि अलग अलग रंगों की सब्जियां थाली में परोसें, बच्चों को सब्जियों के बारे में रोचक बातें बताएं, उन्हें रसोई के छोटे छोटे कामों में शामिल करें, फल काटकर आकर्षक तरीके से परोसें, परिवार के सभी सदस्य खुद भी फल और सब्जियां खाएं। बच्चे वही आदत जल्दी सीखते हैं जो वे अपने घर में देखते हैं। यदि माता पिता खुद सब्जियां छोड़कर केवल जंक फूड खाएंगे तो बच्चों से स्वस्थ भोजन की उम्मीद करना मुश्किल होगा। आज का समय बदल रहा है, बाजार में चिप्स, नमकीन, बर्गर, पिज्जा, पैकेट वाले पेय पदार्थ और कई अन्य प्रकार के पैकेट वाले खाद्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध हैं। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि विज्ञापन देखकर बच्चे इसकी ओर आकर्षित होते हैं। कई बार घर के बड़े लोग भी जल्दी में बच्चों को यही चीजें खाने के लिए दे देते हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि पैकेट का स्वाद ताजे फल और सब्जियों के पोषण की जगह नहीं ले सकता। अगर हम धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएं और रोज के भोजन में फल और सब्जियों को प्राथमिकता दें, तो स्वस्थ खाने की जो आदत है वो विकसित हो सकती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं, तो ये बातें आगे भी हमारी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि हमने गीत से पहले ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें रंग बिरंगी थाली और बेहतर पोषण की, तो श्रोता साथियों, क्या आपने कभी गौर किया है कि प्रकृति ने फलों और सब्जियों को कितना सुंदर रंग दिया है? हरा, लाल, पीला, नारंगी, बैंगनी और सफेद, हर रंग की अपनी खासियत है। इसलिए भोजन में विविधता होना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी थाली जितनी विविध होगी, उतना ही अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। उदाहरण के लिए, हम सप्ताह भर में अलग अलग प्रकार की सब्जियों को भोजन में शामिल कर सकते हैं। केवल एक ही सब्जी पर निर्भर रहने की बजाय मौसम और उपलब्धता के अनुसार भोजन में बदलाव करना चाहिए। यही बात फलों पर भी लागू होती है। रोज एक ही फल खाने की बजाय मौसम के अनुसार अलग अलग फल खाने की आदत बनाई जा सकती है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हमारे गांवों और कस्बों में कई प्रकार के फल और सब्जियां आसानी से मिलती हैं, लेकिन कभी कभी हम दूर से आने वाली महंगी चीजों को ज्यादा अच्छा समझ लेते हैं। सच्चाई यह है कि स्थानीय और मौसमी फल सब्जियां अक्सर ताजी और आसानी से उपलब्ध होती हैं। अगर हमारे घर में थोड़ी सी जगह है तो हम पोषण वाटिका या किचन गार्डन भी बना सकते हैं। घर के आसपास खाली जगह में पालक, मेथी, टमाटर, मिर्च, लौकी, धनिया जैसी चीजें उगाई जा सकती हैं। इससे घर को ताजी सब्जियां मिल सकती हैं और बच्चों को भी खेती और पोषण के बारे में सीखने का अवसर मिलता है। गांव में सामुदायिक स्तर पर भी पोषण वाटिका को बढ़ावा दिया जा सकता है। आंगनबाड़ी और विद्यालय और साथ ही परिवार मिलकर समुदाय में ये फल सब्जियां खाने की आदत को लेकर जागरूकता फैला सकते हैं। श्रोता साथियों, केवल फल और सब्जियां खरीदना ही काफी नहीं है, उन्हें खाने और पकाने से पहले अच्छी तरह साफ करना भी बहुत जरूरी है। हम देखते हैं मनीषा के खेत से बाजार तक पहुंचने के दौरान उन पर मिट्टी और कई सारी गंदगी लग सकती है, इसलिए साफ पानी से अच्छी तरह धोकर उनका उपयोग करना चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि हरी सब्जियां और फल हमारे भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें मौजूद फाइबर, विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्व शरीर के सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। श्रोता साथियों, हमें फल और सब्जियों को केवल बीमारी के समय ही भोजन का हिस्सा नहीं बनाना है। इन्हें रोज के संतुलित भोजन में हमें जगह देनी है। महंगे खाद्य पदार्थों की तलाश करने के बजाय श्रोता साथियों, स्थानीय, मौसमी और आसानी से उपलब्ध होने वाले फल सब्जियों को भी हमें प्राथमिकता देनी चाहिए।
0: बिल्कुल मनीषा, यही अब बात आती है कि हमारे बुजुर्गों की सीख का क्या महत्व है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि थाली में जितने रंग सेहत के उतने संग। भले ही यह कोई वैज्ञानिक नियम नहीं, लेकिन इसमें एक अच्छी सीख छिपी है। भोजन में विविधता रखें। पहले के समय में लोग जो हैं वो खेतों में काम करते थे, मौसम के अनुसार भोजन करते थे और अपने आसपास मिलने वाली प्राकृतिक चीजों को खाने में शामिल करते थे। आज भी हमें अपनी पारंपरिक खाद्य आदतों में छिपी अच्छी बातों को समझने की जरूरत है। स्थानीय साग, मौसमी फल, दालें, अनाज और घर का बना भोजन, ये सब मिलकर एक संतुलित आहार का हिस्सा बन सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि केवल फल और सब्जियां खाने से पूरा पोषण नहीं मिलता है। शरीर को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज तत्वों की भी आवश्यकता होती है। इसलिए श्रोता साथियों, हमारे भोजन में अनाज, दालें, दूध और इसके जो अन्य विकल्प होते हैं, जैसे कि हरी सब्जियां, मेवे, बीज जैसी जो चीजें होती हैं श्रोता साथियों, उन्हें भी हमारे संतुलित भोजन में हमें शामिल करना है। फल और सब्जियां संतुलित आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं, लेकिन श्रोता साथियों, वे पूरे भोजन का अकेला विकल्प नहीं हो सकते। इसीलिए श्रोता साथियों, हमें मौसम के अनुसार अलग अलग फल और सब्जियों का भी सेवन करना चाहिए।
0: जी हाँ मनीषा, यही अब बात आती है कि स्वस्थ भोजन केवल महिलाओं या माताओं की जिम्मेदारी नहीं है, परिवार के हर सदस्य को इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। घर का मुखिया हो, माता पिता हो, दादा दादी हो या बच्चे, सभी को स्वस्थ भोजन की आदत अपनानी चाहिए। बच्चों से कहें कि वे बाजार की चीजें मांगने से पहले यह भी सोचें कि आज उन्होंने कोई फल खाया या नहीं। स्कूल में बच्चों को पोषण के बारे में बताया जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों पर माताओं को बच्चों के भोजन में विविधता के बारे में जानकारी दी जाए। और सबसे जरूरी बात कि हम पोषण को केवल किसी विशेष दिन या अभियान तक सीमित न रखें, बल्कि स्वस्थ भोजन हर दिन की जरूरत है, इस बात को ध्यान में रखें।
1: जी हाँ।
0: जब हम फल और सब्जियों की बात करते हैं तो केवल भोजन की बात नहीं करते, हम एक स्वस्थ जीवन शैली की बात करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा परिवार स्वस्थ रहे, बच्चे मजबूत बने और आने वाली पीढ़ी बेहतर जीवन जिए, तो हमें अपनी रसोई से शुरुआत करनी होगी। आज से ही हम अपने घर में एक छोटा सा बदलाव करें रोजमर्रा के भोजन में फल शामिल करें, हरी सब्जियों को महत्व दें, बच्चों की थाली रंग बिरंगी बनाएं, स्थानीय और मौसमी चीजों को अपनाएं, पैकेट वाले भोजन की आदत कम करने की कोशिश करें। ये छोटे छोटे बदलाव ही बड़े परिणाम लेकर आते हैं। श्रोता साथियों, स्वस्थ शरीर किसी दुकान से खरीदा नहीं जा सकता, इसके लिए हमें अपनी रोजमर्रा की आदत पर ध्यान देना होगा। हमारी रसोई में रखा एक फल, खेत से आई हरी सब्जी और मौसम के अनुसार मिलने वाला स्थानीय भोजन, ये साधारण चीजें लग सकती हैं, लेकिन इनके भीतर स्वास्थ्य का बड़ा संदेश छिपा है। हमें यह समझना होगा कि पोषण का मतलब केवल पेट भरना नहीं है, सही पोषण का अर्थ है शरीर को उसकी जरूरत के अनुसार विविध और संतुलित भोजन देना। जब किसी बच्चे की थाली में फल और सब्जियां शामिल होती हैं, जब एक परिवार बाजार के पैकेट की बजाय घर के भोजन को महत्व देता है, जब गांव में पोषण वाटिका तैयार होती है और जब स्थानीय खाद्य पदार्थों को हम अपनाते हैं, तब स्वस्थ समाज की नींव मजबूत होती है।
1: जी हाँ,
0: आइए श्रोता साथियों, हम सभी हरी सब्जियों को अपनाएं, फलों से दोस्ती को बढ़ाएं और स्वस्थ भोजन को खाएं और स्वस्थ जीवन की ओर अपने कदम बढ़ाएं।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दी।
0: जी हाँ,

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य और हमारी स्वास्थ्य प्रद बातें अब यही समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को।
2: नमस्कार।

सेहत नु राज मुंह है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिंदगी पर बात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने दात काड़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। ओवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज तकी आराज ने अपना वंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाई ने बोनो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितनी शांति मिले है, जैने हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश रागे है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा, प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ूंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

दोस्तों नमस्कार, कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में, जहाँ साथियों हम बात करते हैं हमारे भविष्य की, हमारे सपनों की और हमारे जीवन से जुड़े हकीकत की। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ रहा है। साथियों, आज हम कार्यक्रम के माध्यम से बात करेंगे एक ऐसे सफर की जो हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। बात कर रहे हैं हार से जीत का सफर। दोस्तों, हार ये शब्द सुनते ही हमारा दिल छोटा सा हो जाता है, या फिर कहूँ तो टूट सा जाता है और हौसला भी डगमगा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या सच में हार अंत होती है या फिर वही हार हमें जीत की ओर ले जाने का पहला कदम होती है? आज हम कार्यक्रम के माध्यम से इसी सच्चाई को समझेंगे कि हार आखिर है क्या, हार हमें कमजोर बनाती है या हमें आगे बढ़ाती है। तो श्रोता साथियों, आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में, क्योंकि यहाँ पर हम पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत, फिर हमारी बातचीत की फिर से शुरुआत करेंगे।

अपने लक्ष्य की ओर फिर से बढ़ने के लिए तत्पर रह जाएंगे साथियों। तो जैसा कि बातें मेरी कार्यक्रम के माध्यम से आपसे बहुत अच्छी चल रही है और हम हार से जीत के सफर की ओर बढ़ रहे हैं साथियों, तो ये बातें और भी आगे जारी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान में हमारी बातें चल रही थी गीत से पहले कि हमें हार को हराना कैसे है, जैसा कि हमने जाना था कि हमें हार को स्वीकार करना है साथियों, हिम्मत बना के रखनी है और हमें हार जाने के कारणों के बारे में भी जानना है कि हमारी कमी कहाँ पर रह रही है। इसी के बाद दोस्तों, अगर बात करूँ तो आप अगर सफलता चाहते हैं और जीत की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आपको छोटे छोटे लक्ष्य बनाने होंगे, क्योंकि कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि सही रणनीति अगर नहीं बनी हुई होती है, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं लक्ष्य की ओर बढ़ना जानते हैं लेकिन जब वह लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने सही योजना नहीं बनाई हुई होती है, जिसके कारण भी असफलता मिलती है और वो लोग असफलता मिलने के बाद निराश हो जाते हैं, फिर आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपनी सफलता की ओर बढ़ने के लिए जो लक्ष्य आपने तय किया है उसके छोटे छोटे कदम आपको बढ़ाने हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ना है साथियों, क्योंकि लक्ष्य की ओर बढ़ने का रास्ता आसान नहीं होगा, हमें संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उस संघर्ष से हम डर जाएंगे दोस्तों तो हम सफलता की ओर कभी नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए एकदम बड़ी जीत की उम्मीद आप न करें, बल्कि छोटे छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करें। साथ ही लगातार प्रयास करने की आदत को भी अपनाएं दोस्तों, क्योंकि कई बार कुछ लोग प्रयास तो करते हैं लेकिन अगर उन्हें असफलता मिली तो वो निराश हो जाते हैं। इसलिए सफलता एक बार में कभी नहीं मिलेगी दोस्तों, बार बार आपको कोशिश करनी पड़ेगी और अगर आप बार बार कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन साथियों आप अपनी सफलता की ओर, अपने लक्ष्य की ओर जरूर पहुंच ही जाएंगे। इसलिए साथियों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। अब दोस्तों, प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि असली जीत होती क्या है। दोस्तों, असली जीत का मतलब सिर्फ ट्रॉफी या फिर इनाम पाना नहीं होता, बल्कि असली जीत तो ये है कि हमारा खुद पर विश्वास है, हर हार के बाद भी हम फिर से उठ खड़े होते हैं और आगे बढ़ते रहना हमने सीखा है। दोस्तों, ये जो चीजें हैं वही असली जीत मानी जाती है। हम देख सकते हैं कि अगर आज हम असफल हो गए हैं और हम हार का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में हमें घबराना नहीं है, बल्कि दोस्तों हमें ये याद रखना है कि आज की हार ही कल की जीत की शुरुआत हो सकती है। इसलिए आप खुद से ये वादा कीजिए कि आप हार नहीं मानेंगे बल्कि फिर से मेहनत करेंगे और दोस्तों आप फिर खुद देखेंगे कि आपकी मेहनत आपको कहाँ तक ले जाती है। तो दोस्तों, हार अंत नहीं होती बल्कि एक नई शुरुआत होती है सफलता की। गिरना जरूरी है लेकिन उससे भी जरूरी है फिर से उठना। अगर दोस्तों आप हार को एक सीख के रूप में बदल देंगे तो यकीन मानिए आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, याद रखिए कि जिंदगी का हर मोड़ हमें कुछ नया सिखाता है, कभी खुशी बनकर तो कभी हार बनकर। लेकिन याद रखिए, हार हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें गढ़ने आती है दोस्तों। जब जब आप गिरेंगे तब आप खुद से सिर्फ एक बात कहिएगा कि यह अंत नहीं, यह तो मेरी नई शुरुआत है। क्योंकि असली जीत वही है साथियों जो हार के बाद भी मुस्कुराना सिखाए, जो गिरकर भी उठना सिखाए और जो हमें पहले से ज्यादा मजबूत बना दे। तो आज से ही दोस्तों अपनी हर हार को एक सीख बनाइए, हर ठोकर को एक कदम बनाइए और हर डर को अपनी ताकत बना लीजिए। यकीन मानिए, आपकी मेहनत, आपका विश्वास और आपका हौसला साथियों आपको जरूर अपनी जीत तक ले जाएगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी, क्योंकि दोस्तों समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का और बातें भी ढेर सारी हो चुकी हैं। तो विदा जरूर लूंगी लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान अभी ही समाप्त तो होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए उड़ान भरे विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जाऊ है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा अपने।

0: बड़ा भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन, आप कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था है?
3: नाना अंजलि बोन, हूँ था का?
2: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
3: ओ अंजलि बोन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
2: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
3: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
2: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: सेहत नु राज हूं है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात की शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सी व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह।
3: होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा।
4: होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का